नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से यह आकाशवाणी जलंधर केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1947 दे जेठ महीने की 22 तारीख है। तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने की 12 तारीख है। इस वेले सवेरे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज की सभा हुण शुरू होंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियां का निघा स्वागत करता है।

चलो गुड न्यूज़ दे सिलसिले तो अगे बढ़ते हुए गल्लां बातां दे सिलसिले ते भी आंदे आ, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक चंगे जी मुस्कान दे नाल जे दिन शुरू किया जाए ना फिर दिन होर भी चंगा बन जाता है, तो चंगीआं गल्लां दे नाल शुरू किया जाता है तो होर तो वधिया बनना ही है। क्यों? आकाशवाणी दी स्रोतियां दी गल कर रही हां।

जी गल सीधे सीधे ही मनी जाएगी, सारिया नु कठे नाल लेके ही चलेंगे, एक प्यारी जी मुस्कान दे नाल ते एक छोटी जी कोशिश दे नाल कि हमेशा हर सिचुएशन दे विच अपने आप नु कंट्रोल करेंगे गुस्से दे।

जी साढ़े दोस्त जिहड़े सानू सुन रहे ने, दस जाइए तुसी सानू न्यूज़ ऑन AIR ऐप राही भी सुन सकते हो। बिल्कुल रेडियो ते तुसी सानू सुन ही रहे हो, न्यूज़ ऑन AIR ऐप तो भी सुन सकते, करा गया कुछ नहीं है, अपने प्ले स्टोर ते जाना है ते न्यूज़ ऑन AIR ऐप डाउनलोड करना है ते तुसी पूरे जहान च जिथे मर्जी बैठे हो साढ़े नाल जुड़ सकते हो, आकाशवाणी का हिस्सा बन सकते हो। एक छोटी जी गल थोड़े नाल शेयर कर दी, क्योंकि एक इंसान यहो जिहा हुंदा है ना कि हर टाइम हर पल हर एक घड़ी दे विच ओ किते ना किते कुछ ना

0: सुनो, की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इस नाल तोड़ा कर सूर्य कर बन जाता है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो? हुने रजिस्टर करो pmsuryakar.gov.in ते।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, तो सारे ने ट्यूनिंग किया है 102.7 एफएम रेनबो दे नाल नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज पे दे प्रोग्राम चल रहा है। गुड मॉर्निंग जलंधर, 7:57 ते हो ही गए। चलो जी, एक छोटी जी रेसिपी बारे भी गल कर लेने की केड़ी रेसिपी चाहिए आज, क्योंकि सवेर दे नाश्ते दा ना हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा रहिंदा है कि बनाया जाए की बनाया जाए इहो जिहा की होना चाहिए खाने दे विच कि जिहड़ा ईजीली बन भी जाए ब्रेकफास्ट दे तौर ते, बंदा अपने बाकी सारे काम करने भी शुरू कर दे। की कहिंदे हो, है ना? तो जे आप खास कर वेखिए ना, जे उपमे की गल करिए, उपमा जड़ा है ना भारत के दखनी हिस्से यानी कि कर्नाटक वाली साइड, तमिलनाडु वाली साइड, आंध्र प्रदेश वाली बहुत ज़्यादा मशहूर है। हल्का तो है ही है, डायजस्ट करने भी बहुत वधिया है, तो पौष्टिक तो बहुत ज़्यादा ही है। तो भारत के चाह के नाल भी बहुत ज़्यादा खाधा जाता है। हम जो उपमे की गल करिए, उपमे के जाता है रवा यानी कि सूजी, जी मोटी वाली होंगी है ना, उसकी गल कर रही हैं। तो तुम्हें लेना की है, सूजी लेनी है, एक चम्मच तेल हो गया साडा, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं जाता। तुम्हें एक पैन लेना, वो बस हल्का जहा तेल गर्म करना, उस अपने मसाले यानी कि जड़े अपने प्याज हरी मिर्च जी सब्जियां पाना चाहते उन्होंने हल्का हल्का सौते कर लो, राई का तड़का मार सकते, नाल कड़ी पत्ता हो जाए तो बहुत ही वधिया। नाल ही फिर सूजी भुनना शुरू कर दो, फिर एक हल्की हल्की जी अलग जी खुशबू जी आनी शुरू हो जाती है। हाँ, हूँ पता लग गया कि सूजी जी है ना वो भुन चुकी है। बस फिर अगला काम की करना, तुम्हें पानी पाना है, यानी कि जिनी क सूजी लेती, यानी कि सूजी एक कप है तो उस तो डबल जड़ा ना तुसी हल्का पानी लेना है, मतलब डेढ़, पहले डेढ़ पा के देख लियो, फिर तुसी कहना ये तो कुछ होर ही बन गया। फिर राहिल ने इदा कहा सानू, हाँ हाँ वो वाला काम नहीं करना, ना ना स्वाद अनुसार नमक पाना है, कि जिन्होंने नमक लाइट पसंद है उस अकॉर्डिंग पा लैन, जिन्होंने नमक तेज़ हल्का जहा कई तेज़ खाना पसंद करते, मैं तो हूँ वेखे है तो उस अकॉर्डिंग तुम नमक पा सकते हो। तो बस चंगी तरह उसनू भुनना शुरू कर दो, जो बन जाएगा तो आप पता लग जाए। तो हल्का नाश्ता तो है ही है, तो ईजी है, ईजी रहो एक यानी कि दो तीन मिनट तो मैं नहीं कहूँगी, देखो 6-7 मिनट लगते हैं इनू बनन दे विच। तो यह जड़ा है ना, इसके फायदे की है, हल्का है, आसानी नाल हजम हो जाता है, सवेर लई वधिया है, ऊर्जा भी सानू मिलती है स्रोत है, तो घट तेल वाला तो वधिया है ना, घट तेल वाला खाना खाना चाहिए। सब्जियां मिला के एक पौष्टिक आहार साडा बन जाता है, पेट लंबे समय तक, मतलब लंबे समय तक भरिया रहा है, ठीक है कि नहीं? तो बाकी जड़ा है दुध लाइफ के बहुत जरूरी है, जिन्ना का जरूरी फोन है ना उन्ना का जरूरी लाइफ के दुध में भी कर लेना चाहिए सानू। की कहें फिर, सही कह रही है ना? डन डन डन डन

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

जी आयनू लो जी, FM 102.7 मेगा हर्ज नाल नाल 103.6 मेगा हर्ज ते सारे ने ट्रेनिंग कीता है ते नाल ही प्रोग्राम हुन शुरू हो गया है। दिल तो दिल दा दिल अपना पंजाबी मैं तुहाडी आरजे दोस्त राहिल।

मैं क्या जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बड़ा बड़ा स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम गीत बहार दे विच, जिन्हों लेके हाजिर हो गई हाँ मैं तुहाडी दोस्त ते होस्ट आर जे रिया। तो आगाज़ करते हैं इस सोहनी जिही सवेर का, इस सोहने जिहे गीत दे नाल।

देखो जी, मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मेरे ते गल नहीं आनी चाहिए। मैं किसी नु नहीं कह रही कि तुक्का मार के जुगाड़ करके छुट्टी लै लो, क्योंकि मैंने वैसे भी पता है कि छुट्टी सौखी नहीं मिलने वाली। लॉन्ग वीकेंड है, सारे ही छुट्टी दे जा रहे हैं, तो जे तुसी भी चाहते हो छुट्टी लैना तो तुहाडा जुगाड़ नहीं लग रहा, तो फिर एक जुगाड़ हैगा जो हमेशा ऑफिस दे विच चलदा ही है, अपने बॉस नु कहना तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो।

0: बिहार ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

एफएम रेनबो दी कड़ी ते समा हो गया है 11:56 ते हुन समा हो गया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। केंद्र सरकार ने असम ते नागालैंड सरकार नाल कच्चे तेल अते कुदरती गैस दी खोज अते उत्पादन लई एक 3-पक्षी समझौते ते हस्ताक्षर किते हन। पंजाब ने सरकार ने साइबर अपराधियों वालों सुरक्षा प्रणालियों ते वध रहे माली बुनियादी ढांचे खतरे बारे एक चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष दरमियान सप्लाई चेना ते कौमांतरी सहयोग नाल सहयोग ते जोर दिता है।

0: चल जानी है,
1: और
0: मान लो
1: गाना
0: जड़ी आजादी
1: दसो।
0: तुम मान सकते हो।
1: हाँ जी हाँ
0: चलो गाना दसो, केड़ा सुनोगे जी?
1: मैम, गाना हरजीत हरमन जी का ला दो जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए,
1: थैंक यू मैम, बाय।
0: थैंक यू जी। सो इदा ही तुसी भी साडे नाल गलबात कर सकते हो, अपने दिल दीआं गल्लां साडे नाल सांझियां कर सकते हो। अंबा दीआं जो असीं तुहानूं सवाल पुछणे हो वी तुहानूं असीं पुछांगे जरूर, ते अपने फरमैशी गाने भी सुन सकते हो। इन्ना सब कुछ तुसीं किवें कर सकते हो वी मैं तुहानूं दस दिंदी हां। तुसीं नंबर डायल करना है 0181 2813 7401।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जा लीज ते दिते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दिते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
4: ए, मेरा छोटा भरा है ना, बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नु दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवे पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या, ओहे ठीक है पुत्तर।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, एक गीत है गाए मूवी सिलसिला दा, जो कि लिखी डायरेक्ट कीती ते प्रोडक्शन कीती सीगी यश चोपड़ा जी ने, ते इहदे विच जिहड़े हीरो सीगी ओह सीगे अमिताभ बच्चन ते उन्हां दी नाल उन्हां दे सीगे जया बच्चन ते रेखा जी। बहुत ही सोहनी मूवी सीगी ते अज वी लोकी इहनूं वेख के उन्ने ही एंटरटेन हुंदे ने जिन्ने उस समें ते हुंदे सीगे। अगला जिहड़ा गाना है ओह वी लता ते किशोर दी आवाज़ विच तुहाडे लई पेश कर रही हां, तेरे चेहरे से नज़र नहीं।

तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। ए गीत है गाय मूवी कभी कभी दा, जिदे लेखन किया सीगा पमेला चोपड़ा ने, डायरेक्शन ते प्रोडक्शन की यशराज चोपड़ा ने, एक्टर्स हैगे ने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राखी, वहीदा रहमान ते नीतू सिंह। अगला जिहड़ा तुसीं गाना सुन रहे हो वह हैगा है गाता रहे मेरा दिल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय

वेलकम बैक दोस्तों, तुसी सुन रहे FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते प्रोग्राम तुसी सुन रहे दिल आज शायर है। सो दोस्तों सानू

0: टीटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
3: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
3: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
3: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
3: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
3: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
3: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त

0: करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा

निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हम बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य के हर पहलू की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। और जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से उनको पहचाने, सिम्टम्स को ढूंढें और फिर इलाज कराएं। पर क्या आप ये जानते हैं कि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है? जी हाँ।

0: किया जा रहा है। रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वीकार करिए। शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं और अक्सर हमारे कार्यक्रमों में हम बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। कोशिश ये होती है कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य के हर पहलू की जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। और जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस तरह से उनको पहचाने, सिम्टम्स को ढूंढें और फिर इलाज कराएं। पर क्या आप ये जानते हैं कि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी या मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है? जी हाँ, बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में हम इस पर अक्सर कम ध्यान देते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, उन्हें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संयोजन के कारण विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और बुजुर्गों में जो ये मानसिक समस्या या मानसिक स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, वो सारी जानकारी हम चाहते हैं कि आज आपको रेडियो डॉक्टर के माध्यम से मिले। हमारे साथ हमारी विशेषज्ञ, हमारी स्पेशलिस्ट आ चुके हैं स्टूडियो में। आपका उनसे तारुफ करा दें। डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता हमारे साथ हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में एफएम के इस कार्यक्रम में। तो रेडियो डॉक्टर में जैसे मैंने कहा कि हम अक्सर बात हर पहलू की करना चाहते हैं और स्वास्थ्य के जब हम हर पहलू की जब बात करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम शारीरिक पर ही रुक जाते हैं कि ये बीमारी है वो बीमारी है और ये भूल जाते हैं कि हो सकता है ये बीमारी की उपज जो है वो मानसिक लेवल पे हुई हो। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ये बताएं।
1: आपने बहुत अच्छी चीज बोली एक शालिनी जी, कि कई बार शारीरिक बीमारियां जो हैं वो मानसिक प्रॉब्लम्स की उपज से भी हो सकती हैं। हमारे देश में बहुत एक मान्यता है कि अरे बूढ़े लोगों में फिजिकल प्रॉब्लम्स या शारीरिक परेशानियां होंगी, बट मानसिक स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता है। बीमारी होती भी है तो लगता है अरे ठीक है, हो जाएगी, ठीक, छोटी मोटी चीज है, बूढ़े हैं, इनको तो ये दिक्कतें होंगी। बट बहुत सारे ऐसे अभी अध्ययन हुए हैं जिनमें ये देखा गया है कि मानसिक बीमारियां बूढ़ों में उतनी ही कॉमन या कुछ बीमारियां जनरल पॉपुलेशन से भी ज्यादा बूढ़े लोगों में देखी गई हैं।
0: अच्छा।
1: तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो मानसिक बीमारियों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी उनके स्वास्थ्य।
0: सही बात आपने बोली, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि कई बार जब हम मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या वर्किंग जो लोग हैं या नई नई शादी हुई है और 20s, 30s में है, 40s तक में है, इनको ज्यादा होगी, बिकॉज उनके पास इतने सारे काम है, उनके पास समय नहीं है सोचने का, भागदौड़ बहुत है जिंदगी में, उसके कारण स्ट्रेस है और स्ट्रेस के कारण उनका मेंटल हेल्थ खराब है। ये भी कहीं जुड़ता है, पर जैसे आपने कहा कि एल्डरलीज को भी होता है, तो हम जरूर इसके कारण भी जानना चाहेंगे और किस तरह से हम इससे डील करें, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कैसे इससे डील करें, ये भी हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में हम बात करें। पर इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता जुड़ते हैं डॉक्टर स्वाति, और वो अपनी अपनी समस्याओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में इस विश्वास के साथ जुड़ते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको बहुत सारी उनकी समस्याओं का घर बैठे समाधान मिल जाएगा। तो आज भी हम इस कार्यक्रम में यही चाहेंगे कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, ऐसी कोई समस्या आपको लगती है कि उनको मानसिक स्तर पर आप फील कर रहे हैं, और नहीं तो जानकारी के लिए भी, आप हर किसी को तो उस स्टेज पे पहुंचना ही है, तो कोई जानकारी चाहते हैं आप इस विषय पर जो कि है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली यानी बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। जीवन चलने का नाम है और ये चलती ही रहेगी और इसे चलना भी है, पर हमें खुश रहकर अपने जीवन को बिताना है, रुकना नहीं है भाई, कहीं चलते जाना है।

0: जी हाँ, रुकना नहीं है हार के, और जीवन चलने का ही नाम है, चलते जाना है। पर कितनी अच्छे से आप अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एज वेल एज सोशल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। बहुत जरूरी है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हों, जिससे कि हम जिंदगी को भरपूर जी पाएं। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली पर, बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर। तो पहले इनसे बात करते हैं। जगदीप सिंह जी हमारे साथ हैं कॉल पर। हेलो, नमस्ते जगदीप जी, स्वागत है आपका।
1: देखो 80 साल उम्र है मेरी सर।
0: जी जी।
1: मेरे घुटनों में दर्द 5-6 साल से हो रहा है। इलाज तो कर रहे हैं, भाई वही इलाज होता है, गोली दर्द की देते हैं और ट्यूब देते हैं। 5 साल से यही इलाज हो रहा है। अब 6 महीने से मेरा हाथ कांपने लग गया। वो डॉक्टर कहता है कि ये घुटनों की वजह से हाथ कांप रहा है। ऐसा जानना चाहते हैं कि घुटनों का दर्द इससे साथ है या नहीं है, ये पता करना चाहते हैं।
0: ये घुटनों के दर्द से रिलेटेड है कि नहीं, आप ये जानना चाह रहे हैं?
1: जी
0: जी जी, ठीक है। मैम से पूछते हैं, मैम आपका प्रश्न सुन रही हैं।
2: जगदीप जी, ये बिल्कुल मेरा एरिया नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: दिल्ली के
2: हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमारा एम्स में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग, जो एक सर्विसेज शुरू हुई है, जो सिर्फ

0: बूढ़े लोगों के लिए है, वहाँ पर हमारे हड्डी के डॉक्टर भी आते हैं, आप वहाँ पर एक बार आ सकते हैं। उनका दिन होता है सोमवार, उसमें आके आप उन्हें एक बार दिखा लीजिए, वो ज्यादा अच्छे से इस बात का जवाब दे पाएंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी बात करने के लिए, अपनी समस्या शेयर करने के लिए। और जैसा हमने कहा, हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा डॉक्टर स्वाति, कि हम फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट भी करते हैं और दिमाग भी वहीं ज़्यादा चलता है, यहाँ दर्द है या ये बुखार है या बढ़ती उम्र की जो समस्याएँ होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे वो बीपी हो चाहे जो भी बीमारी हो, लेकिन मेंटल जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसको बहुत इग्नोर किया जाता है। और यही हम चाहते हैं आज इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि इनको नहीं करना है, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो इश्यूज की हम बात कर रहे हैं वो उसकी क्या टाइप्स हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं?
0: सबसे कॉमन जो देखा गया है इस उम्र में वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे हम सब जानते हैं कि जिसमें उदासीपन रहना, लेकिन बूढ़े लोगों में कई बार देखा गया है कि उनमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, वो बहुत नकारात्मक बातें करेंगे, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, ज़्यादा सोने लगेंगे। कुछ लोग होते हैं जो जिनको नींद में दिक्कत भी होती है, भूख ख़त्म हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ देखी गई है जिसको कहते हैं मतिभ्रम या डिमेंशिया। डिमेंशिया जिसमें याददाश्त बहुत ज़्यादा खराब होने लगी है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ें, कब खाना खाया, आज क्या किया, पिछले 24 घंटे में क्या किया, सवालों को बार बार दोहराते हैं आप, छोटे मोटे डिसीजंस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। सो डिमेंशिया। फिर हो गया आपका एंग्जाइटी, हम बहुत कॉमनली देखते हैं आगे क्या होगा, क्या मेरा कोई ख्याल रखने वाला होगा, मुझे कुछ हो गया तो।
1: और हम अक्सर ये भी कहते हैं कि इनके पास कुछ काम नहीं है करने के लिए तो इसलिए ये ओवर थिंकिंग करते हैं, तो क्या ये उसी से होता है कि आप कुछ नहीं करते हो? तो ये भी मैं जरूर बात करूंगी कि अपने आप को बिजी रखना कितना जरूरी है। पर हमारे एक श्रोता है वो हमारे साथ जुड़ी है, मिसेस बेदी, तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, स्वागत है मिसेस बेदी आपका रेडियो डॉक्टर में।
2: जी जी डॉक्टर साहब दोनों को बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बताएं आप क्या प्रश्न करना चाहेंगी?
2: ऐसा है डॉक्टर, मैं हूँ 74 की, पर मेरी लाइफस्टाइल है 16 साल वाला। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस एज में ये मत सोचिए कि मैं बूढ़ा हो गया। कहते हैं दिल हो जवान तो आप जिंदा रहे।
1: तो आज तो हम यही कार्यक्रम कर रहे हैं बेदी जी। हाँ। शॉर्ट में अपना लाइफस्टाइल बता दीजिए सभी श्रोताओं को, 16 साल के बन जाए हम सब।
2: अपने आप को, क्योंकि मैं रेडियो से बहुत जुड़ी हुई हूँ, एक वर्ल्ड फेमस आरजे वो मेरी बेटी है, तो उसने मुझे बहुत जिंदा किया। मैं बड़ी नेगेटिव थी क्योंकि सारे छोड़ गए, पेरेंट्स छोड़ गए, चले गए, खत्म हो गए, हस्बैंड चले गए, तो मेरा थोड़ा सा कुछ पार्टनरशिप के झगड़े थे, उससे मैं बड़ी परेशान थी। तो मुझे कहते हैं ना कोई आपको ऐसा साथी मिल जाए जो जिंदगी दे, तो उसने मुझे पॉजिटिविटी दी। और अब मैं क्या करती हूँ, 25 साल है मैं योग में हूँ। मैं इतनी बीमार थी कि दो कदम नहीं चल सकती थी, अब 19 साल से उसी सेंटर की मैं हेड हूँ।
1: चलिए, तो योग ने बहुत आपकी मदद की, लेकिन कुछ
2: जिंदा ही उन्होंने।
1: हाँ, तो कोई प्रश्न है आपका? हाँ, कि
2: नहीं नहीं मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ ना, तो मैं समझती हूँ। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ सब बुजुर्गों को।
1: जी बताइए।
2: एक तो अपने आप को बुजुर्ग मत समझिए, दूसरा बच्चों के साथ मिलके रहिए, उनको ज्यादा टोका टक्की मत करिए, उनको जो बात समझानी है थोड़े प्यार से समझाइए, नहीं तो बच्चे भी चिढ़ जाते हैं और उनके आगे जो बच्चे हैं वो और भी चिढ़ जाते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है? और मैं देखिए योग करती हूँ, कुछ मैं बिजनेस करती हूँ कि जो मेरे हाथ कभी टेढ़े थे बिल्कुल, अब मैं उनसे केक सेल करती हूँ, पिकल चटनी जैसे सेल करती हूँ, बिजी बहुत।
1: जी जी, तो आज जो कार्यक्रम में बेदी जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी मिसेस बेदी आपको, जो कार्यक्रम में हमें डॉक्टर साहब से बात करनी है वो सारी बातें आप अपनी तरफ से एयर पर बोल रही है।
2: मेरा मैसेज कभी
1: जी जी, आपका मैसेज
2: बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: सबको दिल से समझना चाहिए जो ये कह रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये कोशिश है।
2: अगली बात मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप उनकी बातों को ऐसे अंदर जैसे कहते रोटी खा ली और पेट में चले जाएं वो बातें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा, थैंकफुल हूँ मैं आपकी कि आपने ये टॉपिक चुना।
1: और हम आपके थैंकफुल हैं मिसेस बेदी, आप जैसे श्रोता हैं तो हमें बहुत सारी नई नई चीजें भी पता लगती हैं और हमें ये भी पता लगता है कि हमारा कार्यक्रम सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है।
2: आपको बताओ मेरी क्लास का टाइम है पर आज मैं 5 मिनट का लेट हूँ, आपसे बात
1: करना। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत कॉल करने के लिए,
0: थैंक यू।
1: और एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्या है। हेलो राजेंद्र जी। जी

0: शालिनी मैम और डॉक्टर साहिबा दोनों को नमस्कार
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्ते।
0: अब सवाल मेरा ये है कि आप बुजुर्ग कहते किसको है, पहले मैं जानना चाहूंगा।
1: 60 साल
0: से ऊपर, 65 साल से ऊपर, 73, 80, 90 साल से ऊपर, किसे आप बुजुर्ग मानेंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, कहते हैं कि चिंता ही चिता तैयार कर देती है, तो मानसिक रोग हो ही ना, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डाइट, एक्सरसाइज या क्या एटमोसफेयर सरकमस्टेंसेस क्या
1: जी, जी बिल्कुल, इसकी बात हम पूरे कार्यक्रम में करते रहेंगे, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए
0: प्लीज। तीसरा सवाल मेरा ये है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन में क्या फर्क है, प्लीज जरा इसको डिटेल विस्तार से समझाएं बड़े में। और मुझे चौथा सवाल, मेरे को स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है मैं, तो प्लीज इससे मैं कैसे दूर रहूं, प्लीज का उपाय बताएं।
1: जी,
0: मेहरबानी।
1: बहुत सारी बातें आप जानना चाहते हैं राजेंद्र जी, तो इसको हम धीरे धीरे करके कार्यक्रम के दौरान लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को, और डॉक्टर स्वाति आज हमें इस कार्यक्रम में यही बताने वाली हैं। तो सबसे जो आप इनकी पहला जो प्रश्न था, बुजुर्ग किसे कहते हैं, पहले तो इसे ही समझ लेते हैं।
2: तो राजेंद्र जी नमस्ते, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेफिनेशन है, तो बुजुर्ग वो है जो 60 से ऊपर है, जहाँ पे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। बट मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं तो बुजुर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस 60 के हो गए तो अब तो हम बुजुर्ग हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे पहले हमारी जो श्रोता जुड़ी, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बुजुर्ग मानती नहीं हूँ, मैं 16 साल जैसा महसूस करती हूँ। सो मजाक में बोले तो एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है, आप उसे कैसे लेते हैं। प्रिवेंशन की यहाँ पे आपने बात करी कि हम कैसे उस चीज़ को रोकें, कैसे हम इंश्योर करें कि मानसिक बीमारियाँ ना हो, उसके कुछ कुछ चीज़ें हम कहते हैं। सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे आप चाहे योगा करिए, वॉक पे जाइए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखना। आजकल जैसे अब छोटे बच्चों को भी अगर हम देखें, यंगस्टर्स को, सबकी डाइट बहुत ख़राब हो गई है, तो न्यूट्रिशियस खाना खाना, फ्रूट्स वगैरह का इनटेक, पानी का इनटेक अपना ठीक रहना, किसी भी नशे वाली चीज़ से दूर रहना, जैसे निकोटीन हो गया, सिगरेट्स हो गई, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, उनका सेवन या तो बिल्कुल नहीं करना या कम से कम करना। उसके अलावा जैसे मेडिटेशन के बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं कि मेडिटेशन या प्राणायाम वगैरह करने से फर्क पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम्स, आपकी रिलेशनशिप्स, हम लोग सब काम में डूबे रहते हैं कि काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये करना है, बट बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने देखा है कि रिलेशनशिप्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके मेंटल वेलबींग के लिए। और वो भी ये नहीं कि 15 रिलेशनशिप, अगर 5 रिलेशनशिप भी है लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने ब्रेन को एक्टिव रखना। कोई नई चीज़ सीख ली, पजल्स वगैरह करते रहे, गेम्स खेले, अपने लोगों से बात करी, अपने काम को, रूटीन को फॉलो करते रहे, तो ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है।
1: और एक और जो प्रश्न उन्होंने पूछा, वो जो हम उससे पहले बात कर ही रहे थे, आपने अलग अलग जो टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज पे हम बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात आपने कर दी थी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, इन सबका डिफरेंस जो है वो हमारे और भी बहुत सारे श्रोता जानना चाहेंगे।
2: राइट, सो टेंशन और स्ट्रेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। टेंशन है कि बस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना कि अरे कल एग्जाम है कैसे होगा, या कल मुझे कहीं जाना है तो कैसे जाऊंगी। स्ट्रेस है अगेन वेरी सिमिलर, जहाँ पे हम किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें दिक्कत हो रही है उसको प्लान करने में या मैनेज करने में। तो ये दोनों चीज़ें तो आपके जनरल डे टू डे लाइफ में सबके ही चलते हैं। जब हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम एक मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं। एंग्जाइटी जिसमें एक ऐसा समय जहाँ पे लंबे समय तक बिना किसी बहुत ज़्यादा वजह के आपको परेशानी चल रही है, आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या हर समय बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि सर चकरा रहा है, या ठीक नहीं लग रहा है,
1: होना कि
2: अच्छा नहीं
1: अच्छा
2: लग रहा
1: नहीं
2: है
1: लग
2: अंदर
1: रहा है।
2: से और डिप्रेशन जैसे मैंने बताया, जहाँ पे आपका मन उदास या चिड़चिड़ा हो जाएगा, वहां पे उसके साथ साथ भी एंग्जाइटी हो सकती है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन यूजुअली एल्डरली में हमने देखे हैं कि साथ साथ चलते
1: अच्छा।
2: हैं, बट डिप्रेशन का सबसे कॉमन फीचर रहेगा कि आपका मन परेशान रहेगा, चाहे वो चिड़चिड़ा रहे या वो दुखी रहे। एंग्जाइटी में फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे, पेट जल्दी खराब हो गया है, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है, हाथ पैर में कंपन हो रहा है।
1: तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये अलग अलग कारणों से हो सकते हैं या सेम कारण से ही

0: दोनों अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं?
1: सेम कारण से भी हो सकते हैं. किसको, जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ आपके किसी के यहाँ, आपके किसी की डेथ हो गई, तो अब उसकी वजह से किसी को एंग्जाइटी भी हो सकती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा. और वहीं डिप्रेशन भी हो सकता है कि अब मैं उस इंसान के बिना कैसे जीऊं. कभी कभी कुछ चीजों में, जैसे एल्डरली में हम लोग देखते हैं हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी ज्यादा रहती है. ऐसा नहीं है कि उनको डिप्रेशन है, बट उनको बस ये एंग्जाइटी है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊं, या मेरा काम ठीक से चलता रहे वाला. डिप्रेशन ज्यादातर उन लोगों में देखा गया है जहां लोनलीनेस बहुत ज्यादा होगी, या पहले डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, या आपको अभी रिसेंटली कोई लॉस हुआ है, उन सब में डिप्रेशन ज्यादा देखा गया है.
0: तो मतलब जैसे कुछ अननोन का फियर जो होता है उसको एंग्जाइटी समझे, है ना. और अगर आपको एक्चुअल कोई ऐसी फीलिंग हो रही है वेरी लो, वेरी डल, देन इट इज समथिंग डिप्रेशन के जैसा. तो चलिए यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनेंगे, लौट कर आते हैं. और गाने भी बहुत अच्छे होते हैं अपने मूड को ठीक रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए. गाना सुनना भी कहते हैं ना स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में बीच बीच में आपको स्ट्रेस फ्री करते रहते हैं. स्ट्रेस नहीं लेना है, पर हाँ कार्यक्रम को में जो भी हम लेकर आ रहे हैं उसको समझना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल.
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए.
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर.
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। आज बात हो रही है बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ बात की, कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, पर एक मैसेज लेना चाहूंगी। यहाँ पर परिधि लिख रही है दिल्ली से, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स फॉर अस शालिनी मैम। क्वेश्चन ये है, कैन पुअर मेंटल हेल्थ ऑल्सो लीड टू बॉडी पेन्स? जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि फिजिकल मेंटल जुड़ा हुआ है, आपने कहा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसी की तरफ है ये, कि अगर पुअर मेंटल हेल्थ है तो क्या बॉडी पेन्स में मैनिफेस्ट हो सकता है? और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि आई हैव नोटिस दैट ऑन डेज आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, माय लेग्स स्टार्ट्स पेनिंग व्हेन आई गो टू स्लीप। तो क्या ये रिलेशन आपस में है?
2: हाँ परिधि जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से कभी कभी हमें बॉडी पेन्स वगैरह हो सकते हैं, चाहे वो लेग्स में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो। उसका इलाज बेटर रहेगा कि आप एक बार किसी स्पेशलिस्ट से मिलने, चाहे साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से, जो बाकी चीजों को भी असेस कर सके कि कोई अंडरलाइंग एक तो फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरा अगर स्ट्रेस है तो क्या उसमें सिर्फ काउंसलिंग की जरूरत है या दवाई की भी जरूरत है अगर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो सो बेस्ट रहे

0: कि मिल लीजिए क्योंकि दोनों रिलेटेड हो सकते हैं
1: जी। और हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं, यामिन भाई से बात कर लेते हैं।
2: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार यामिन भाई।
2: मैम को भी नमस्कार
0: जी। नमस्ते।
2: मैं जानना चाह रहा था जैसे कि बुजुर्गों को हम खाना वगैरह टाइम पे देते हैं, सब कुछ दवाई वगैरह टाइम पे देते हैं, लेकिन जब भी वो चिल्लाते हैं कहते हैं और उसे शेयर करते हैं, तो ये क्या बीमारी हो जाती है, वो कहाँ दिखाएं इनको?
1: मुझे जहाँ तक समझ में आता है यामिन भाई ये कहना चाहते हैं कि हम उनकी केयर तो कर रहे हैं पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं है या हाइपर हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है?
0: हाँ जी, वो हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड ना हो, हाइपर हो जाएं, उस समय खुद को बुरा लगता है। मान लीजिए आप उनकी केयर कर रहे हैं और वो सामने किसी को कह रहे हैं कि मेरा तो कोई देखभाल ही नहीं करता या मेरे साथ तो ये टाइम नहीं स्पेंड करता, तो वो चीज़ खुद को बहुत हर्ट कर सकती है। बट अगर हम उस समय अपने आप को हटाकर उन्हें देख पाएं कि चलो वो परेशान है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें जानबूझ के हर्ट करना चाहते हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रख के उनके साथ डील करें, या तो उस सिचुएशन से हट जाएं या उन्हें प्यार से थोड़ा समझा लें। और आपको अगर बहुत उस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है तो आप जाके अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी और फैमिली मेम्बर से उस बारे में बात कर लें। बट उस समय अगर आप उनके ऊपर वापस चिल्लाएंगे तो सिचुएशंस खराब ही होंगी।
1: जी जी। और ऐसा ही एक और मैसेज आया, पहले हम एक कॉल ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? जितेंद्र जी।
3: हाँ।
1: जी बताएं।
3: जितेंद्र जयपुर से।
1: हाँ जी जितेंद्र जी, अपना प्रश्न करें।
3: जैसे हमारा प्रस्ताव 52, मेरी उम्र 52-53 साल है, लेकिन जैसे नींद की हमारी कमी है और मन सेंट्रल टाइप का रहता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, रेनबो भी सुन ले, एफएम गोल्ड भी सुन ले, ऐसे
1: सुन
3: करके
1: कई तरह का
3: कितना देर सभी पे अच्छा आता रहता है, सबके अच्छा आता रहता है।
1: हाँ, तो आपको अच्छा लगता है ना सुन के?
3: हाँ हाँ। तो मुझे इसमें पजल भी रहता है माइंड, मतलब ये भी होता है कि क्या क्या करें,
1: क्या क्या क्या देखें, क्या क्या छोड़ें,
3: क्या क्या, सारे अच्छा है ना?
1: सारे अच्छा है। चलिए,
3: प्रसार भारती का सारा ही चीज अच्छा है।
1: अरे वाह क्या बात है, ये तो हमारी एक तरह से तारीफ कर दी आपने।
3: हाँ, तो इसका तो नींद की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हालांकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ कुछ, मतलब ऑफिसली कुछ ऐसे भी थोड़ा सा हल्का सा मन प्रॉब्लम रहता है जैसे, तो कैसे ठीक रखूँ अपने आप को? जैसे ये
1: जी
3: मेरे, मैं जयपुर में रहता हूँ, मैं पहले कलकत्ता रहता था, तो दोस्त लोग थे,
1: तो यहाँ दोस्त लोग नहीं है,
3: रहते, हाँ, नहीं है।
1: मैडम आपसे कुछ पूछना चाहेंगी तो आप लाइन पे रहिए।
0: नींद में क्या दिक्कत आती है जितेंद्र जी?
3: मतलब जैसे 3-4 घंटे के बाद फिर नींद खुल जाती है।
0: अच्छा।
3: फिर 1-2 घंटा काम करते फिर सोते हैं।
0: अच्छा।
3: और दोपहर में भी सोने की इच्छा करती है लेकिन ऑफिस में रहते हैं तो इसलिए ठीक से नहीं, मतलब नींद का ज्यादातर प्रॉब्लम है।
0: तो 3-4 घंटे बाद जब नींद खुल जाती है तो उसके बाद कितनी देर बाद नींद आती है?
3: करीब 1.5-2 घंटे बाद।
0: और उस 1.5-2 घंटे में आप क्या करते हैं?
3: कुछ घर का काम कर लेते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
0: अच्छा ठीक है।
3: अच्छा, और दूसरा चीज है कि जैसे कहीं घूमने की प्लानिंग हो रहा है तो चित्तौड़गढ़ जाए कि मथुरा जाए, सब पाक पाक, तो इसी कंफ्यूजन में कहीं नहीं जा पाते।
0: राइट। तो ये तो हम कहते रहे, वो जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें कि क्या नहीं करें। बट एक देखिए, दो चीजें जो आप जहाँ पे आप कह रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें चंचल, ये चीजें हो सकती हैं, उसमें बेस्ट ये है कि एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, लिस्ट बना लेती हूँ क्या क्या करना है, उसमें से सबसे जरूरी क्या है या सबसे अच्छा क्या है या सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है या कौन सी चीज ज्यादा इजीली हो सकती है। जैसे आपने कहा 2 जगहों के नाम लिए आपने कहा, तो जहां पे ज्यादा इजीली जा सकते हैं वहां पे पहले हो आइए, अगला वाला अगले बारे के लिए लिख लीजिए। सो उस तरह से एक लिस्ट बना लीजिए। वही अगर आपको प्रोग्राम सुनने हैं तो उनकी लिस्ट बना ली कि अच्छा आज ये वाला सुन लूंगा, कल ये वाला सुन लूंगा, ताकि हर चीज को बैलेंस कर पाए।
1: रेडियो डॉक्टर रोज सुनना है लेकिन जितेंद्र जी,
0: क्योंकि चीजों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा अरे ये छूट गया वो कर लिया लेकिन वो वाली चीज तो नहीं हुई, उन सब से भी नींद की दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा मन में परेशानी वगैरह चल रही है, तो अगर जो दोस्त यहाँ नहीं है तो क्या ऐसे कोई फैमिली मेंबर्स या दोस्त ऐसे हैं जिनसे आप थोड़ा रेगुलरली कम से कम फोन पे बात कर सकते हैं? सो वो चीज
3: यहाँ पे नहीं है लेकिन दूसरे जगह है।
0: अच्छा, नहीं जैसे फोन पे बात कर लिया थोड़ा,
3: कर सकते हैं ना,
0: थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह सुबह करते हैं?
3: नहीं, शाम को करते हैं, 6:30-6 बजे शाम।
0: उसको कोशिश करिए सुबह कर लीजिए या शाम को थोड़ा और जल्दी कर लीजिए। और रात को जब नींद खुलती है तो घर के काम मत करिए उस समय अपना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया लेकिन बेड पे बैठ के मत पढ़िए उसको, कहीं कुर्सी पे या नीचे जमीन पे कहीं भी बैठ के पढ़िए, और फिर नींद आने लगे तो वापस सोने चले जाइए। या फिर जैसे योग निद्रा होती है या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वगैरह तो आजकल बहुत मिल जाती हैं, वो सब सुन लीजिए और लाइट वगैरह बंद रखिए।

0: बहुत ज्यादा घर के काम करने लगेंगे तो दिमाग फिर से एक्टिव हो जाएगा. सो दिमाग को रिलैक्स रखना है. फोन का ये नहीं कि फोन को देखते रहे या टीवी को देखते रहे, लेकिन कुछ रिलैक्सिंग सुन लिया या सिर्फ पढ़ लिया बैठ के.
1: धन्यवाद प्रश्न करने के लिए. हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में. बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं. धन्यवाद जितेंद्र जी. ये मैसेज हमें लिखकर भेजा है नरदेव सिंह चौहान ने कोटद्वार उत्तराखंड से. शालिनी मैम एंड डॉक्टर स्वाति मैम को नमस्कार. मैम, डॉक्टर साहिबा से एक मानसिक रोगी के केयर टेकर जैसे उनके पुत्र या पति या बहू, वो क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? ये चाहते हैं कि आप उनको एडवाइस दें, क्योंकि इन्होंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हमारे बुजुर्ग चाहते हैं वो को नहीं मिल पाता है अपने बहू से, चाहे बेटे से, चाहे पति से, वट एवर दे एक्सपेक्ट. तो उससे स्थितियां और बद से बदतर होती जाती हैं. तो आपका केयर टेकर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा?
0: बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार हम मरीजों को देखते देखते उन लोगों को भूल जाते हैं जो मरीजों की देखभाल कर रहे
1: जी,
0: हैं.
1: सो
0: उसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो परफेक्ट कभी भी आप नहीं हो पाएंगे. कभी भी ये नहीं हो पाएगा कि सामने वाला पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो. वो अपने आप में परेशान है तो उसको किसी ना किसी चीज में परेशानी दिख जाएगी. सो जैसे मैंने कहा, हर चीज को अपने ऊपर नहीं लेना है कि ये मेरी कंप्लेन कर रहे हैं या मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, वो नहीं करना है. अपनी सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो जैसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ी देर आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए या इन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा सा समय निकालिए. और उसके लिए ज़रूरी है कि सारी फैमिली कोऑपरेट करे. अगर सब लोग साथ में रह रहे हैं तो थोड़ा समय बेटे को भी मिल गया जहाँ पे वो अपना काम कर रहा है या अपने इन्जॉयमेंट के लिए कुछ कर रहा है. फिर थोड़ा सा फादर का ध्यान रख लिया, वैसे ही बहू ने करा, वैसे ही वाइफ ने किया, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड ने किया. तो एक सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा तो सबकी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी और सबको थोड़ा थोड़ा टाइम आउट भी मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही हैं, हम लोग आपस में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर के आसपास या एरिया में किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं जो एज अ फैमिली आपसे बात करके चीज़ों को समझ सके, आपको समझा सके कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है.
1: जी जी. और लगभग ऐसा ही एक और मैसेज हमारे पास आया है. डॉक्टर, हाउ टू गेट डीप कंटिन्यूस एंड रेस्टफुल स्लीप, जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले राजेंद्र जी के साथ, तो आपने थोड़ा सा तो बताया. तो इनको कुछ और कहना चाहेंगे आप?
0: सो स्लीप के लिए ना हमारा एक मेथड होता है जिसको कहते हैं स्लीप हाइजीन. सो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो बता देती हूँ, शायद अगर उससे मदद मिले
1: जी,
0: तो
1: बिल्कुल.
0: पहला रूल होता है कि सोने का जाने का समय और बेड छोड़ने का समय एक होना चाहिए. कि अगर आप 10-10:30 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 से 11 के बीच में सोने चले जाइए. सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो चाहे नींद आई है या नहीं आई है, 7 बजे बिस्तर को छोड़ दीजिए. दूसरी चीज, अगर आधे घंटे तक नींद नहीं आती है तो बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है. उठ जाइए, कोई किताब पढ़ लीजिए, कोई प्लेलिस्ट बना लीजिए जिसमें स्लीप स्टोरी, स्लीप म्यूजिक या योग निद्रा या मेडिटेशन टाइप की चीजें हों जिनको आप सिर्फ सुन सकें. टीवी मोबाइल वगैरह का उपयोग नहीं करना है, बल्कि सोने जाने से आधा घंटा पहले ही वो चीजें बंद कर दीजिए. एक्सरसाइज प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम में अगर स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं तो. शाम को 5-6 बजे के बाद चाय नहीं पीनी है. सिगरेट अगर आप स्मोक करते हैं या टोबैको लेते हैं तो वो सब नहीं लेना है. अल्कोहल अवॉइड करनी है, कैफीन अवॉइड करना है. रात को गर्म दूध पी के सो सकते हैं या गर्म पानी से थोड़ा नहा के सो सकते हैं, उससे माइंड कूल डाउन होता है. एक तरीका जो मेरे लिए बहुत काम करता है, आप सोचेंगे कि ये क्या तरीका है, बट मुझे अगर नींद नहीं आए तो मैं हनुमान चालीसा करना शुरू कर देती हूँ. मेन पर्पज यह है कि आपका जो उस समय जब नींद नहीं आती, हम बहुत सारा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, और जितना
1: या कुछ और नेगेटिव थॉट्स
0: या और कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हम कहते हैं जितना नींद के पीछे भागेंगे उतना नींद आपसे दूर भागेगी. तो आप चाहे कोई मंत्र पढ़ लीजिए या बैकवर्ड काउंटिंग कर लीजिए, तो उन सब से क्या होता है, उन नेगेटिव थॉट से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अगेन माइंड रिलैक्स होगा, नींद आने लगेगी. सो ये कुछ तरीके हम बताते हैं स्लीप से.
1: हमारे साथ हमारे रेगुलर जो श्रोता हैं चट्टा जी, वो भी कॉल पे आ गए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं. हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैडम
1: जी. नमस्ते नमस्ते.
2: रघुविंदर सिंह चट्टा बोल रहा हूँ
1: जी. आप अपना प्रश्न करें.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्ते जी.
2: डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं बड़ा कूल माइंडेड पर्सन हूँ
0: जी,
2: और 37 साल गवर्नमेंट जॉब की एज ए ऑफिसर, और रेगुलर लिस्टनर भी हूँ आकाशवाणी का 45 ईयर्स से. लेकिन मेरे को एक दिक्कत ये होती है कि मैं कई बार छोटी सी बात पर एकदम से आग बबूला हो जाता हूँ. फिर मेरे से ना तो कोई काम होता है और ना मैं रात को सो पाता हूँ. बार बार नींद खुल जाती है, जैसे किसी मैं जा रहा हूँ और सामने से कोई जानकर आ रहा है, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या

0: मैंने मैसेज किया प्रोग्राम में, वो शामिल नहीं हुआ तो मेरे को तो फिर मेरा माइंड जो है ना वो अपसेट हो जाता है। तो
1: छटा जी, कोई मैसेज नहीं शामिल हुआ इस पे आप आग बबूला मत हुआ करिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं।
0: नहीं वो बात नहीं, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ।
1: हाँ आपकी ही बात मैं कर रही हूँ क्योंकि आप हमारे सभी कार्यक्रमों में भी मैसेज करते हैं हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर में शामिल हो। तो हमने सुन लिया, डॉक्टर क्या बताना चाहेंगे इनको?
2: तो चड्ढा जी नमस्ते, नमस्कार। तो इसको हम कहते हैं कि एकदम से आग बबूला, मतलब ऐसा लगना कि कहीं ना कहीं दिमाग में शायद ये सोच चलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, या सामने वाले को तमीज से रहना चाहिए, या लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, जो भी एक दिमाग में चल सकता है। तो जब हम ये बहुत ज्यादा इस चीज पे अटक जाते हैं ना कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है या सामने वाले को हमेशा चीजों को ठीक से करना चाहिए, तो वहां पर हमें फिर जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें लगता है कि हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है। उसके लिए जो एक सिंपल हम लोग टेक्निक कहते हैं, टाइम आउट। आप जब गुस्सा आ रहा है, एक तो उस परिस्थिति से बाहर आ जाइए, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करा। अगर फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम कहते हैं अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लीजिए, जैसे सारा गुस्सा उसमें भर दिया है, और उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए मुट्ठी को छोड़िए। ऐसे करके 5 मिनट तक थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उस सिचुएशन से हटेंगे, और फिर सोचना है कि क्या मेरा गुस्सा जायज है, क्या सामने वाले ने अगर मुझे इग्नोर किया या मैसेज शामिल नहीं हुआ तो क्या उसका कोई और कारण भी हो सकता है। सो इस तरह से जब अपने आप को पॉजिटिवली समझाएंगे या अपनी सोच को क्वेश्चन खुद करेंगे कि मैं ऐसा किस वजह से सोच रहा हूँ, क्या मेरा सोचना सही है, क्या इसको देखने का और कोई तरीका है, या मैं किसी और, किसी बच्चे को अगर वो इस परिस्थिति में होता तो उसको क्या समझाता कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए, उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। बट सबसे जरूरी है आपको एकदम से जो गुस्सा आया है उसको शांत करना। उसके लिए बेस्ट होता है थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, मुंह पे ठंडे पानी से थोड़ा छींटा दे दीजिए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि आप ब्रीद करेंगे तो आपका इन जनरल बॉडी टेम्परेचर, माइंड सब काम डाउन होगा।
0: जी थैंक यू मैडम,
1: जी थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है, मुझे लगता है बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी हो सकता है, तो उनको भी जवाब मिल गया। यहाँ पर एक फिर म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, गाना सुनेंगे और वापस आएंगे, और जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं उनको भी शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली हमारे साथ हैं। बात हो रही है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली की, तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए रेनबो के साथ और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य, इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत और इसको कैसे पहचाने और कितना इम्पोर्टेंट होता है मेंटली हेल्दी रहना। सुखपाल जी हमारे साथ कॉल पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते सुखपाल जी।
1: डॉक्टर साहिब बाबू नमस्ते
0: जी। आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे?
1: मैम मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहिब से, मेरी उम्र तो 75 वर्ष है सर, तो ये 75 वर्ष के बाद जो है ये बुजुर्गों में चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है?
2: चिड़चिड़ापन
0: की बात कर रहे हैं
1: जी।
2: तो सुखपाल जी नमस्कार। चिड़चिड़ापन बेसिकली इसलिए आ जाता है क्योंकि शायद उस इंसान को, बुजुर्ग को लगता है कि उसने जिंदगी में या तो बहुत कुछ करा लेकिन उसको उसका फल नहीं मिला, या जिंदगी में वो ठीक से अपने जो चाहता था वो नहीं कर पाया दूसरों की वजह से, या कई लोग जो दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं चाहे फाइनेंशियली या फिजिकली, उस चीज में भी चिड़चिड़ापन आ सकता है, या आपके पास रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ करने को नहीं है, आपको नहीं पता कि कैसे अपना दिन गुजारूं, उस केस में भी चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं चिड़चिड़ापन के, बस ये देखने की जरूरत है कि अगर चिड़चिड़ापन कंटिन्यू हो रहा है, वो चीज निकल नहीं रही है और उसकी वजह से बाकी दिक्कतें भी आने लगी हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगी है, फैमिली के साथ नहीं बन रही है, या इन उसकी वजह से नींद में भूख में भी चेंज आ गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि वो ढंग से डायग्नोस कर सकें कि और कुछ डिप्रेशन टाइप की बीमारी तो नहीं हो रही है और उसका इलाज कर सकें
0: जी। और मैसेजेस हमारे पास हैं, सोहन जी ने लिखा है देहरादून से कि मेरी मदर की उम्र 81 इयर्स है और अचानक पता नहीं क्या हुआ बड़बड़ाने लगी, किसी को पहचान नहीं रही है, उनका बीपी भी उन्होंने बताया है 158/78 है और कुछ खा भी नहीं रही है, तो क्या हो सकता है ये जानना चाहते हैं।
2: इस केस में यूजुअली इस एज में जब अचानक से कोई चीज हो तो एक बीमारी होती है जिसको डिलीरियम कहते हैं, जिसमें अचानक से इंसान चीजों को भूलने लगेगा, अपने आसपास पहलों को नहीं पहचानेगा, या फिर उसको नहीं पता कि अभी क्या समय हुआ है, कहाँ पे वो रह रहा है या कहाँ पे बैठा है, और बड़बड़ाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कई बार ये चीजें स्ट्रोक में भी हो सकती हैं, तो बेटर रहेगा कि आप जहां भी रहते हैं आसपास किसी साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लें ताकि वो प्रॉपर ब्रेन स्कैन वगैरह करके देख सकें कि कोई और दिक्कत तो नहीं है।
0: अच्छा, और ये हमें लिखकर भेजा है, लिखने वाले ने नाम तो नहीं लिखा है पर लिखा है, नमस्कार टू डियरेस्ट दोस्त शालिनी जी एंड डॉक्टर साहिबा, थैंक्स फॉर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ब्लड टेस्ट एंड अदर स्कैन्स नीडेड बट दीज आर नॉट डन टाइमली विच कैन अफेक्ट मेंटली। तो बहुत जरूरी है क्योंकि टेस्ट भी होने चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ये हम हमेशा कह ही रहे हैं। तो इन्होंने ये लिखा है कि कभी कभी विटामिन डी या B12 या अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से भी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, तो कितना रेगुलरली करना चाहिए, हाउ फ्रीक्वेंटली?
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेंटल हेल्थ डायरेक्टली तो इनकी वजह से नहीं बिगड़ेगी, बट हाँ ये फिजिकल हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकते हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ सकता है। सो बेटर रहता है कि कम से कम एक ईयरली अपना जांच करवा लीजिए, जिसमें बेसिक जो आपके ब्लड टेस्ट हैं या अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज हैं, ये एक बेसिक करवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर उसके बीच में लगता है कि कोई दिक्कत होने लगी है तो आप थोड़ा सा उसको पहले भी करवा सकते हैं
0: जी। ललित भाटिया हमको लिख रहे हैं, 65 साल के हैं, अहमदाबाद से। नमस्कार डॉक्टर मैडम और एंकर, आज का विषय धन्यवाद का पात्र है

0: और मैडम का बताने का तरीका, वर्णन करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ रेडियो सुनना ही हमारी हर तकलीफ का इलाज है, तो इतना ही लिखा है उन्होंने, कोई प्रश्न नहीं किया है, पर जी
1: धन्यवाद
0: और आपकी तारीफ की है। और ये हमें लिखा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि बहुत से बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ऐसा बहुत आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है, और उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं होता है, वो अक्सर खोए खोए रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो ऐसे बुजुर्ग किस तरह से अपने दिमाग को ऑक्यूपाइड रखें, फ्रेश रखें, बिकॉज ये भी एक काफी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है।
1: बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली अर्बन सिटीज में, जहाँ पे अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया है लोगों में। तो उसमें हम कहते हैं कि देखिए, अपने लेवल पे जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं वो है अपना रूटीन बनाना। कई बार क्या होता है, जब बहुत अकेलापन है, कोई है नहीं, तो लगता है क्यों सुबह उठना है, क्यों नहाना धोना है, क्यों कुछ भी काम करना है। बट एक रूटीन अगर आप बना पाएंगे तो उससे आप फिजिकली मेंटली बेटर रहेंगे। दूसरा, आसपास अगर आपका कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई एनजीओ है जहाँ पे आप जा सकते हैं, या मंदिर, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मंदिर में चले गए या गुरुद्वारे में चले गए जहाँ पे लोगों की थोड़ी हेल्प करवा दी या कर दी, वो उसमें मदद मिल सकती है। कई एनजीओज होते हैं जो ओल्ड एज के लिए स्पेशली काम करते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ऑर्फनेजेस वगैरह में भी आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, तो छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ जब घुलेंगे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, खेलेंगे, तो वहां पे भी माइंड फ्रेश हो सकता है,
0: अकेलापन दूर हो सकता है
1: अकेलापन दूर हो सकता
0: जी।
1: है। या अगर आपको लगता है कि आप कोई इस उम्र में कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई चीज जो आपने सोची थी कि मैं करूंगा लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाए, तो इस तरह का कोई नई चीज भी आप सीख सकते हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बच्चों को चाहे फ्री में ट्यूशन पढ़ा दिया गरीब बच्चों को। सो जितना एक्टिव अपने आप को रख पाएंगे, अपन खुद को थोड़ा पुश जरूर करना पड़ेगा, बट एक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पे और चार लोग मिल जाएं आपको, उससे मदद मिल सकती है।
0: और ये हमें लिखकर भेजा है मोहम्मद इब्राहिम जी ने, कि कई बार ये देखने में आता है कि कुछ एल्डरली जो होते हैं वो एज के साथ ओवर स्वीट हो जाते हैं या कुछ इरिटेबल हो जाते हैं, तो इसका कुछ खास कारण होता है, क्यों हो जाता है ऐसा?
1: देखिए, वो तो सबका एक तो अपना नेचर भी है कि इंसान इन जनरल कैसा है, फिर उसके सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं। एक थ्योरी है जो कहती है कि अगर बुढ़ापे में आके आपको लगा कि आपने अपनी जिंदगी अभी तक अच्छे से जी ली है, जो चाहते थे वो काम कर लिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक से सेटल्ड हो गए हैं, तो आप खुद में बड़ा कंटेंट फील करेंगे कि हाँ मैंने कर लिया, और आपको पता है कि फ्यूचर को लेके बहुत चिंता नहीं है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं हुई हैं, आप जनरली परेशान रहे हैं लाइफ में, या फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, या आप फैमिली मेम्बर्स किसी भी चीज़ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। तो ये तो सबकी अपनी
0: जी सर्कमस्टांसेस पे भी
1: सर्कमस्टांसेस
0: डिपेंड
1: पे
0: करता
1: डिपेंड
0: है, बिल्कुल
1: करेगा।
0: बिल्कुल। और ये एक जो मैसेज है, इससे ही हम कार्यक्रम को यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला खत्म करेंगे। गोविंद बंसोड़े जी लिख रहे हैं लातूर महाराष्ट्र से, नमस्कार। और बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये बात रेडियो डॉक्टर में डॉक्टर राहुल खरे साहब ने कही थी, और इसी बात को हम रोज सुबह व्यायाम करते समय दोहराते हैं, जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं रेडियो डॉक्टर इनकी जिंदगी में इनको मदद कर रहा है, रेडियो डॉक्टर के कारण हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत बड़ा सुधार हुआ है, और हम रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, नमस्कार कहना चाहेंगे। तो हमारी तरफ से भी गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, और साथ ही साथ आपने इतने अच्छे शब्द हमारे कार्यक्रम के बारे में कहे। और अब इस कार्यक्रम को खत्म करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मैं जरूर चाहूंगी कि कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आप चाहें हमारे उन श्रोताओं के लिए भी जो देर से जुड़े, कहीं ना कहीं आपकी बातों को पूरा नहीं सुन पाए, तो जो आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ ऑफ एल्डरली, तो इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगी?
1: दो तीन चीजें कहूंगी शालिनी जी, कि एक तो हर बूढ़ा इंसान बीमार ही होगा, वो जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी बूढ़े लोग हैं जो एक्चुअली बहुत हेल्दी हैं। अब उसके लिए जो जरूरी है वो है, एक तो शुरू से अपना ख्याल रखना, जितना जल्दी आप शुरू कर पाएंगे उतना आपकी एजिंग बेटर होगी। तो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, खाने पीने का, एक्सरसाइज का, अपने आप को मेंटली इंगेज रखना, बीमारियों से बचने की कोशिश करना, या अगर बीमारियां हो गई हैं तो उनका जल्दी इलाज करवा लेना। सो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जिस तरह से शारीरिक परेशानियां किसी को भी हो सकती हैं, उस तरह से मानसिक परेशानियां भी किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सही समय पे हम उनका इलाज करवा लें, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब के लिए दवाइयां भी उपलब्ध हैं बहुत अच्छी, और साथ में काउंसलिंग भी होती है, अगर हम समय से इलाज करा लें

0: तो जो बचे हुए दिन हैं, जो बाकी जिंदगी है, वो बहुत अच्छे से निकल सकती है। और तीसरी चीज, एक बुजुर्ग का भी परिवार की तरफ एक ये जिम्मेदारी, जैसे एक श्रोता ने कहा था कि आप अच्छे से बात कीजिए, बहुत ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए, तो उनका भी एक फर्ज है। और साथ ही साथ परिवार का भी एक फर्ज है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखें, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिश्ते ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, रिश्ते ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। और बिल्कुल, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? जैसा गोविंद जी ने लिखा, आप भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में, हमें बताना चाहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है उसमें, आप कुछ बदलाव चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें लिख सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर स्वाति केटिया गुप्ता को कि आप यहाँ आई, इस विषय पर इतनी जानकारी आपने श्रोताओं को दी, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में एम्स न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, यहाँ आने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और जी, उम्मीद है कि तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। तो कड़ी गल है, जरा कोई ठीक नहीं है तो आप ठीक कर देंगे। मैं कहती गलां बात आप करेंगे ऐसी खास। सो सत श्री अकाल जलंधर के आस पास के सारे स्रोतियां। तो तुम सुन रहे हो अपना मनपसंद फोन इन शो, जिथे गल् भी होगी, हासे भी होगी। तो

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उस दे घर वाले कुड़कुड़ दास बुलांदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही ओ सारेयां ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू ए पखा क्यों चलदा छड़ता, बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तों उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तों मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अज ही रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in ते।

0: वेलकम बैक एफ एम बैंड 102.7 मेगा हर्ट्स से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिहदा नाम है हैलो जलंधर। ते हैलो जलंधर दे विच साडे नाल बड़े मज़ेदार कॉलर जुड़ रहे ने ते अगले कॉलर किहड़े ने आओ असी जानदे आ। ते महाराज जी सत श्री अकाल, की हाल चाल, ठीक हो जी?
1: सत श्री अकाल भाजी,
0: की नाम है जी तुहाडा?
1: मेरा भाजी ना रिंकू भगत भाजी।
0: ओ रिंकू भाजी, की चली जांदा, मौसम नु एंजॉय कर रहे हो?
1: हां जी हां जी भाजी, काम कर रहे हैं।
0: अरे सही बात है भी, काम करना बड़ा जरूरी हुंदा। वैसे साडा देश आ ना जिहड़ा, इत्थे कारीगरां दी कोई घाट नहीं, पर अजकल ना वैसे देखा जा रहा कि जिन्ने भी कारीगर आ उन्हां दी असी किते ना इन्नी रिस्पैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अहीं दे तरे दी नवी दियां नवीं चीज़ां खरीदी जाने, रिपेयर असी करा नहीं रहे, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ते अच्छा मैनूं ये चीज़ दसो कि तुहानूं एक सवाल पुछदे आ, किसी मकैनिक ने कदे अजिहा ना दस्या होवे पार्ट दा कि तुहानूं लगे वह बनाया ही हुणे है, या चलो तुहानूं अगला ही पुछ लैने, थोड़ा औखा जाया सौखा जा पुछ लैने, किसी कारीगर ने कदे काम नालों वध सलाह दित्ती हुण तुहानूं ते काम कीता ना होवे?
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बंदे हैगे भाई
0: इदां दे बंदे तां मैनूं लगदा भरे ही पए नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: सही है सही है। ते कदे कदे मान लो कि कोई कारीगर तुहाडे घरे आया ते उहने पखा ठीक करदिआं टीवी खराब करता होवे?
1: हाँ जी हाँ जी भाजी, बिजली खराब कर दिंदे आ
0: मतलब कई कारीगर तो इदा गल्ला करते हैं ना भी जिदा पता नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन तो पढ़ाई करके आए होंगे। दसो फिर बंदा कि भरोसा करे नहीं एक तू एक चढ़न दया वैसे कारीगर ना बड़े स्कीमी जे आता होर छो मेरे घर की आप की कहानी एक बड़ी इंटरस्टिंग है। ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਅਤੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, 5-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਮ ਬਰਾਬਰ ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੂਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ?
1: ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਅ ਜੀ।
0: ਅੱਛਾ

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: जी दोस्तों, वापस आ गए हैं तुहाडा लै के फेवरेट प्रोग्राम युवाणी। ते मैं तुहाडी दोस्त आरजे रितिका।
1: ते मैं तुहाडी दोस्त आरजे आरुषि। पर रितिका, हुण मेरे तो ना वेट नहीं हो रही। प्लीज़, जिहड़ी साडी ट्रेन है ना, वो बहुत भज्जी जा रही है। ते मैनूं लगदा है कि हुण बहुत ही प्यारे जे वर्ड ते आके रुकी है। सो आपां फटाफट अपना जो वर्ड है वो आपां एक्सप्लेन करिए ते दसीए साडे लिसनर्स
0: जी
1: नूं।
0: जरूर, प्लेटफॉर्म ते आ चुके हो तो फिर दस भी दो ना केड़ा गोल्डन वर्ड लेके आए हो।
1: अज का जो गोल्डन वर्ड, तुसी बहुत ही प्यारा नाम दिता गोल्डन वर्ड। अज का जो गोल्डन वर्ड रहेगा वो है इखलास। ये बहुत ही प्यारा मीनिंग है। एक उर्दू का शब्द है, एक अरबी भाषा का शब्द है। तो इनका मीनिंग जो है ना, बहुत ही प्यारा तो पीसफुल जहा मीनिंग है इहदा।
0: जी दोस्तों, इखलास जिवें कि हुणे एक इखलास, मैं भी गलत बोल दिता है, इखलास बोल दिता सीगा, इखलास, राइट, इखलास। जी हाँ जी, इखलास एक अरबी भाषा का मूल शब्द है जिसका मतलब कि अर्थ जिवें कि हुणे आरुषि ने दस्सिया, एक सच्ची नीयत, पवित्रता, यानी कि सिंसियरिटी ते प्योरिटी। ये है पंजाबी, उर्दू ते इस्लामी परंपरा विच इस शब्द के बड़े डूंगे मायने ने। ते आम तौर पर साहित्यिक अर्थ इसका जिहड़ा है मन्या जाता है, या कि आप गल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल असं ये उदाहरण जो देने हो कहेंगे कि सच्चा प्यार ते जिहड़ी दोस्ती हुंदी है वो जिहड़ी है वो कितना कितने प्योरिटी दे नाल भरपूर हुंदी है। ते वो जिहड़ी प्योरिटी हुंदी है ना, उही दिखाउंदी है कि ये इखलास है।
1: मैनूं एवें लगता है कि इहदा मीनिंग इखलास ना, आपां मोस्टली ये जो वर्ड है सब ने उर्दू गाणियां दे विच, पोइट्रीज दे विच, या फिर आपां कह दिंदे आ कि जदों कोई भी पोइटिक गल कीती जांदी है ना, या आपां जदों टू लाइनर्स या वन लाइनर्स बोले जाण, उहनां दे विच ये वाला ये जो वर्ड है इखलास, इहनूं यूज़ किया जाता है। क्योंकि ज इनका जो मीनिंग है ना, बहुत ही प्योर, बहुत ही सिंसियर इहदा मीनिंग है। इनका मतलब ही होंगे कि किसी भी चीज़ नूं प्रॉपर डिवोशन दे नाल, प्योरिटी दे नाल, साफ नीयत दे नाल करना।
0: बिल्कुल, जिवें कि तुसीं हुणे दस्सिया कि साफ नीयत दे नाल, जेकर आपां किसी काम या रिश्ते नूं पूरी ईमानदारी दे नाल ते वफादारी दे नाल निरछल हो के निभाउने आ ना, फिर वो इखलास कहा जांदा है। ते तुहानूं पता है खालस शब्द दे नाल इसका बहुत डूंघा शब्द है, मतलब कि मतलब है, इसनूं उसदे नाल पूरा डिफाइन किया जांदा है, क्योंकि ये वर्ड जिहड़ा उसदी जड़ तों ही बनया, इस करके इसनूं उसदे नाल बहुत ज़्यादा जोड़िया जांदा है। ते इस तों इलावा इस्लामिक ते धार्मिक महत्व इसका बहुत है।
1: बिल्कुल, बिकॉज मैंने एवं लगता है कि ये वर्ड का मीनिंग जो किसी भी मीनिंग प्योरिटी आ जाए ना, या सिंसेरिटी आ जाए, तो डिवोशन आ जाए, और ये वर्ड तो तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। तो मैंने एवं लगता है कि तुसी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है ना, तुसी उन्दे जो बहुत आराम नाल निकल सकते हो। इस करके कहिंदे ने ना कि इखलास वो है जो तुहाडे चंगे कम्मां दा गवाह सिर्फ तुहाडा जमीर अते रब होवे, ना कि दुनिया की तस्वीर ते उन्हां दी तारीफ।
0: बिल्कुल, इस्लामी शब्दावली दे विच इसदी बहुत ज़्यादा जड़ी है, महत्वता दर्शाई गई है, हर इबादत दे विच इसदा जिक्र है। जिवें कि तुसीं एक वर्ड भी सुना होना है, सुरह अल्लाह इखलास, सुने
1: नहीं?
0: ये भी कुरान शरीफ दे विच ये वर्ड जड़ा है लिखा गया है, ते उत्थे भी इबादत दे नाल इसनूं जड़ा है जोड़िया गया, यानी कि रब दे नाल इसदा एक डूंघा संबंध है। ते दोस्तों, तुहानूं अज असीं एक अजिहा वर्ड दिता है जिहनूं सुन के तुसीं भी हैरान हो, ते असीं भी एक तरह ते हैरान ही सीगे। मैनूं आरुषि ने जदों समझाया मैनूं बहुत वधिया लगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि जदों आपां किसी भी चीज़ नूं डिवोशन या प्योरिटी दे नाल करदे आ ना, या सिंसैरिटी दे नाल करदे आ, वो कम हमेशा अच्छा ही हुंदा है। तां जदों तुसीं किसी भी चीज़ नूं अपना काम जदों तुसीं कर रहे हो, ते इह बिना सोचे करो ना कि इहदा रिजल्ट की निकलेगा, इह किवें होएगा, मेरे तो होएगा कि नहीं होएगा, तो वो काम हमेशा अच्छा ही जाएगा। इस करके कहंदे ने कि अपनी नीयत हमेशा साफ रखो, अपना जो ईमान है हमेशा साफ रखना चाहिए।
0: तो जिवें प्यार दे विच भी असीं किसी दे नाल पूरी प्योरिटी दे नाल रिश्ता निभाउने आ, इखलास दे नाल असीं रहिंदे आ उहनां दे नाल, ते इह गल जिहड़ी है उत्थे भी ढुकवीं गिनी जांदी है ना, प्योर फीलिंग।
1: बिल्कुल, मैनूं लगता है कि इहदा मीनिंग असीं बहुत बखूबी तरीके दे नाल अपने सारे लिसनर्स नूं समझा चुके हैं। तो आई होप कि जिन्ने भी साडे लिसनर सानूं सुन रहे ने, साडे जिहड़ा वर्ड एक्सप्रैस एवरी डे असीं नवां वर्ड लैके आउंदे आ, उहनूं तुसीं अपनी एवरी डे वोकैबलरी दे विच तुसीं उहनूं यूज़ जरूर कर दोगे, या कितें ना कितें तुहानूं ओह वर्ड जरूर याद आंदा होएगा। इस करके जदों भी तुहानूं साडे दित्ते गए वर्ड्स, या असीं जदों किसी भी वर्ड दा प्यारा जिहा मीनिंग तुहाडे वास्ते लैके आने आ, ते उम्मीद करदे आ कि तुसीं उहनूं अपनी वोकैब दे विच, अपनी रेगूलर लाइफ दे विच, रेगूलर डे टू डे जो भी तुसीं अपनी गल्लां करदे हो उहदे विच इंप्लीमेंट करना शुरू करो। ते इह जो दुनिया है, या जदों आपां अपनी कहिंदे ना कि अपनी बोली जो है ओह बहुत साफ ते प्योर हो जाएगी।
0: बिल्कुल दोस्तों, इन्नी सोहनी व्याख्या दे नाल असीं तुहानूं हरेक वर्ड दसदे आ, ते अज्ज वी असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ

0: क्या गीत सुने आरुषि, एक तरह ना नॉस्टैल्जिया जै हिट हो गया, क्योंकि पुराना गीत सुन के ना वाइब जड़ी हो अच्छी आ जाती है, तो वक्री वाइब आती है। तो तुम की कहना चाहते हो?
1: मैं एवं लगता है कि सब नू अपनी अपनी लाइफ दे विच ना डॉन बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि या फिर आप कह सकते हैं कि एक लाइन है ना बहुत फेमस कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। सब नू अपनी लाइफ दे विच अपना फेवरेट बन के रहना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपना फेवरेट बन के रहोगे ना हमेशा खुश रहोगे, अपने आप नू सब तो पहले प्रायोरिटी दोगे, तो तुम बहुत ईजीली सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ खुशी दे नाल कर सकते हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी तो तुहाडी है मेरे दोस्त, आप लोगों तो की लेना, इसलिए अपने आप च खुश रहना चाहिए, तो अपनी लाइफ नू फुल टू फुल इंजॉय करते रहना चाहिए। ते आओ अगली मूवी के बारे गल करने, तुहानू पता अगली मूवी डिसेबिलिटी के उत्ते बेस्ड है।
1: मैनू लगता है ये जो डिसेबिलिटी है वो एक कलर दे नाल रिलेटेड है।
0: एग्जैक्टली, यू आर ट्रू। तो फिर तुसी दस दो केड़ी मूवी दे गल करन लगे सी?
1: ए मूवी है ब्लैक। मैं लगता है सबने इंदा नाम सुनिया ही होएगा, क्योंकि ए इन्नी पुरानी मूवी भी नहीं है पर इन्नी नवी मूवी भी नहीं है। मैं लगता है कि सबने कितना कितने अगर देखी नहीं पर सुनिया जरूर होएगा इस मूवी दे बारे। एक ए जो मूवी है एक कुड़ी दे अराउंड बेस्ड है, जिदा टीचर जो कुड़ी हुंदी है ना वो डैफ ते ब्लाइंड दोनों, ना ही उन्हें देख सकती है ना ही वह सुन सकती है। तो उन्हें जो टीचर हुंदे हैं उन्हें दसदे हैं कि तू लाइफ जीनी किवें है, बिकॉज हुण अगर इस दुनिया ते आए हो तो तुसी बिना जिए तो जा नहीं सकते, तुसी कमरे च बंद हो के नहीं रह सकते, फिर तुहानू कोई डिसेबिलिटी है, तुहानू कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज कहंदे ने ना कि अगर ये वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा।
0: बिल्कुल दोस्तों, डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुसी कमजोर हो या तुहाडी कोई मतलब कि तुहानू कोई विचारा देखे कि विचारा समझे, तुहानू चाहिए है कि तुसी अपनी लाइफ दे विच कुछ ना कुछ नवा करो, क्योंकि एक तुहाडे लिए टर्निंग पॉइंट लैके आंदा है कि तुसी अगर एक दरवाजा बंद है तो तुसी चार दरवाजे दे राही कुछ ना कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल, मैं एवं लगता है कि एक सही इंसान, एक सही गाइडेंस, एक सही परसन तुहानू हमेशा हर एक चीज़ दे विच पॉजिटिविटी ते पॉसिबिलिटी कि तुसी किस तरीके दे नाल ओ चीज़ कर सकते हो हमेशा तुहानू जरूर दसेगा।
0: तो दोस्तों जेकर तुसी ये मूवी नहीं देखी तो तुहानू ये मूवी जरूर देखनी चाहिए है, तो जिन्होंने देखी हो तो वैसे फिर इस मूवी की वाहवाही करते ही होंगे। तो तुहानू पता एक हिचकी नाम की भी मूवी है जिदे विच एक टीचर हुंदी है, विद्या बालन आई थिंक।
1: बिल्कुल
0: हाँ, विद्या बालन, उन्होंने ये जोड़ा है रोल प्ले किया है, तो उन्होंने वो अपनी जी उन्होंने हिचकियाँ की प्रॉब्लम होंगी है, राइट, उन्होंने उस प्रॉब्लम तो उपर उठ के अपने आप को एक नवा टीचर के तौर पर मतलब बच्चों कुछ ना कुछ सिखाना शुरू किया, तो अपनी एक लाइफ के नवा जो पड़ाव है उसको पार किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने एज ए टीचर अपनी लाइफ के जो अपना करियर है उन्होंने एज ए टीचर चूज़ किया, अपनी जो भी उन्होंने हेल्थ इशू कह लो, उन्हों की प्रॉब्लम कह लो, जो उन्होंने बाय बर्थ तो प्रॉब्लम से बोलन के जो उन्होंने इशू आता से उन्होंने लैके, पर उन्होंने कदे एवें नहीं समझिया कि मैं किसी नालों घट हाँ या मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। उन्होंने टीचर का प्रोफेसन चुनिया जो कि एक बहुत व्डा तो बहुत उच्चा प्रोफेसन मनिया जाता है अज दे या पुराने टाइम तो, या अगर आप देखते आईए तो, और उन्होंने जिन्हें भी स्टूडेंट से स्टार्टिंग सब ने उन्हों का पहले मजाक उड़ाया, पर लास्ट के आते आते उन्होंने जिन्हें भी बच्चे से सब उन्होंने इन्नी क रिस्पैक्ट करते और वो सारे बच्चे इन्ने क काबिल बने अपने अपने करियर्स दे विच क्योंकि उन्होंने एक सही गाइडेंस मिली। तो मैटर नहीं करता कि जो सामने वाला परसन है वो उनका आउटलुक किवें दा है, वो बोलता किवें है, वो किस तरीके का है, उस इंसान की सीरत किवें दी है, उनकी सोच किवें दी है, वो मैटर करती है। तो अपन एवें नहीं किसी नूं जज करना चाहिए, तो यह कहते हैं कि जजमेंटल नहीं बनना चाहिए
0: जी। तो अरुषि ये तो आप गल कर ली कि डिसेबिलिटी उत्ते, राइट, तो हूँ असं गल करिए इमोशनल प्रॉब्लम्स ते पास्ट ट्रॉमा दे नाल इक जुड़ी हुई मूवी के बारे।
1: बिल्कुल, मैंने लगता है कि ये जो मूवी है ना ये नाल सारे रिलेट करेंगे, क्योंकि पास्ट ट्रॉमाज ते इमोशनल जो ट्रॉमाज हैं ये सब दी लाइफ दे विच किसी ना किसी पड़ाव ते आके जरूर होंदे ही हैं और सारे इस चीज़ नू जरूर फेस करते हैं
0: जी। बड़ी ही सोहनी मूवी है जी, ये आलिया भट्ट ने इत्थे जिहड़ा अपना रोल अदा किया, इस दे नाल शाहरुख खान ने बड़ी वड्डी भूमिका इस फिल्म दे विच निभाई है। ये फिल्म एक कुड़ी दे आले दुआले घूमती है, यानी कि आलिया भट्ट ने इत्थे जिहड़ा रोल प्ले किया होंदा है जो कि इमोशनल प्रॉब्लम्स ते पास्ट ट्रॉमा दे नाल पूरी तरह जुड़ी होंदी है, तो उसनू एक थैरेपिस्ट दी लोड़ होंदी है जिथे वो थैरेपिस्ट मदद लैंदी है ते अपने मेंटल हेल्थ नू नॉर्मल करती है ते उसनू एज मतलब कि वधिया जिंदगी दे तौर ते जीन दे विच कामयाब हो जाती है।
1: बिल्कुल, मैंने एवं लगता है कि इस मूवी तो सानू एक बहुत ही खास ते बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलिया सी कि थेरेपीज़ नू आपां

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी युवाणी, तुसी एंजॉय कर रहे हो अपनी दोस्त आरजे रितिका ते आरजे
1: आरुषि दे नाल। मैं लगता है कि सारे लिसनर्स ना बहुत बेताबी नाल वेट कर रहे हैं, सानू बहुत सारी कॉल्स आ भी रही हैं, पर कोई टेक्निकल ग्लिच दे कारण असं थोड़ी कॉल्स पिक नहीं कर पा रहे। पर उदों तक असं जदों तक वो टेक्निकल ग्लिच सही हुंदा है उद तक असं अपनी गल करते हैं। रितिका, तुसी भी तो समर वेकेशन दे विच कितना कितने गए होगे।
0: बिल्कुल, हर बार तो जाने हैं, बट इस बार तो सिर्फ हले टच ही पैक है, तो जाने की तैयारी पूरी है। कोई गल नहीं, घूम के आवांगे। लास्ट टाइम असी पहाड़ा च गए सी ते ओए होए क्या नज़ारे सीगे पहाड़ा दे। मेरा एक्सपीरियंस पूछो ते मैं तो बहुत खुश होई सी, क्योंकि क्या जन्नत जो है ना नसीब हुई सी उस टाइम ते, मैं कह नहीं सकती।
1: मैं लगता है सारियां दी ना एक एक आप कह दें ना एक प्रायोरिटी जरूर होंगी। एक एक आप कह दें कि कोई चाहता है कि मैं बीच परसन हाँ, कोई कहें मैं माउंटेन परसन हाँ, किसी को पहाड़ पसंद होंगे, किसी को सिर्फ वादियाँ पसंद होंगे, किसी को लेक्स पसंद होंगे, किसी को बीच पसंद होंगे। इस करके मैं लगता है थोड़ी गलों तो मैं एवं लग रहा है कि तुम एक माउंटेन परसन हो, राइट?
0: बिल्कुल, पहाड़ा की जी खूबसूरती है ना मैं वक्रा ही मतलब कह दें, मेरा मूड बना दें, खुश हो जाती हूँ मैं तो, इन्नी खुश होंगी दस नहीं सकती।
1: छुट्टियां दे विच ना चाहे तुसी कितने भी घूमन जाओ या छुट्टियां दे विच घूमन ना भी जाओ, सबनू जन्नत ही नसीब होंगी। सबनू एवं लगता है कि बस आही जन्नत है, साड़ी जिंदगी एवें ही रहनी चाहिए है।
0: तो चलो आओ एक गीत सुनते हैं, तद तक तो आप अपने लिसनर नाल गलबात कर लेने, फिर जुड़ते हैं थोड़े नाल मुड़ एक प्यारी जी ब्रेक तो बाद।

मंजिल का नाम नहीं, सफर का नाम भी है। इस मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट, एक चंगा शब्द, एक पुराना गीत, एक कप चाह जा किसे अपने दा साथ, यही तो छोटिया छोटिया खुशियां ने जो जिंदगी नू खूबसूरत बनाउंदियां ने। दोस्तों, जिंदगी विच हर किसी नू इको जे पत्ते नहीं वंडदी। जिहड़ी जिंदगी है वह सारिआं नू इको जिहे पत्ते जिहड़े ने उह नहीं वंडदी, पर खेडण दा हौसला हर किसी नू दिंदी है। किसी की जिंदगी विच खुशियां ज़्यादा हुंदियां ने ते किसी की जिंदगी विच संघर्ष ज़्यादा हुंदा है, पर एक गल सांझी है, हर दिन एक नवा मौका लैके जरूर आउंदा है। इसे सोच नाल, इसे मुहब्बत नाल अते दिलां नू जोड़न वाले एहसासां नाल असी लैके आए हाँ तुहाडा अपना शो लव यू जिंदगी। इत्थे होणगियां दिल दीआं गल्लां, जिंदगी दीआं कहानियां, यादां दे सफे, मुस्कुराहटां दे पल अते ओह गीत जो तुहाडे दिल दी आवाज़ बन जांदे ने। तां जिथे भी हो, जो भी कर रहे हो, कुछ पल अपने लिए कढ लो यार, कढ लो, चेहरे ते एक मुस्कान लियाओ, दिल दियां खिड़कियां खोलो ते अपने आप नू कहो, हाँ जिंदगी कदे आसान नहीं हुंदी पर खूबसूरत जरूर हुंदी है। मैं हाँ तुहाडा अपना दोस्त आरजे जोरावर सिंह मेज़बान, ते अगले एक घंटे तक असीं इकट्ठे महसूस करांगे जिंदगी दे हर रंग नू। ते आओ शुरू करिए ये सोहना सफ़र एक मुस्कान दे नाल, एक उम्मीद दे नाल, अते दिलों निकले इन्हां शब्दां नाल। लव यू जिंदगी।

सो वेलकम बैक दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 MHz ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना फेवरेट शो सुन रहे हो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। ते लव यू जिंदगी ये कोई आम जिहा शब्द नहीं है, क्योंकि हर शब्द दे विच एक अपनी अपनी एनर्जी अपनी अपनी ताकत हुंदी है। सो दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि खुशी दी जिहड़ी परिभाषा है ना, बाहर नहीं अंदर हुंदी है। असी सोचते हाँ कि नवी कार, वड्डा घर जां तनखाह वधण नाल खुशी मिलेगी, पर खोज कहिंदी है कि 50% खुशी साढ़े जीना यानी कि जीन्स, 10% हालात अते 40% साडियां रोज़ दियां आदतां ते निर्भर करदी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल है, क्योंकि खुशी दा राज जिहड़ा है ना, वह राज साढ़े अंदर ही समाया होया। सो खुशी सानू सब तो ज़्यादा उदों ही हुंदी है जदों असी अखां बंद करके ना सवेरे सवेरे, क्योंकि वह वाइब्रेशन बड़ी खूबसूरत हुंदी है जदों असी ध्यान धर के बैठते हैं, चाहे कोई रब नूं मन्ने ते चाहे ना मन्ने, पर वो जिहड़ी नेचर वालों सानू खुशी मिलती है ना, वह सानू एहसास दवाउंदी है कि वाकई सच्चियां खुशियां साढ़े अंदर ही वसियां ने। सो कहिंदे ने खुशी कोई चीज़ नहीं जो बाज़ारों खरीदी जाए, एक अवस्था है, एक नज़रिया है। पंजाबी सभ्याचार च खुशी नूं चढ़दी कला कह के सलाम किया जाता है। गुरबाणी तो लैके लोक गीतां तक खुशी का फलसफा साढ़े DNA विच ही वसिया होया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल कही है। सो खुशी दे रिलेटिड एक असी तुहानूं कहानी सुनाउने आ। एक कहानी है बीबी गुलाबो दी मुस्कान दी। जी बिल्कुल ठीक सुनिया, बीबी गुलाबो। देखो जिहदा नाम ही बीबी गुलाबो आ, ते अपने आप दे विच ही एक सुगंधी मैनूं लगदा तुहाडे तक पहुँच गई होएगी। सो बीबी गुलाबो दी कहानी कुछ इस तरीके नाल, आओ तुहानूं सुनाउने आ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नन तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्तर, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। राष्ट्रीय नैशनल एजेंसी ने 21 जून में होने वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लिए प्रीख्या की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट की। BJP की पंजाब इकाई के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 सालों दौरान पंजाब को केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता मिली है। मशहूर भारतीय शूटिंग कोच और एशियाई खेडों के सबका सोन तगमा जेतू जसपाल राणा का देहांत हो गया है, 49 साल के सन। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला पीलिया के मामलों की सूचना मिलने उपरंत किया टीम सने दौरा, कहा स्थिति काबू हेठ। पंजाब कल आए हनेरी झक्खड़ के मीह नाल कुड़ी दे सने 2 लोगों की हुई मौत, 1 व्यक्ति गंभीर जख्मी। 14 जून तक इन्हों पंजाब के हरियाणा केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट किया गया जारी। तो हुण खबरां विस्थार दे नाल। राष्ट्रीय टैस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून में होने वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लिए प्रीख्या की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट की है। नवा समा दोपहर बाद 2 बजे तो शाम 5:15 होएगा। सोधी हुई प्रीख्या की मियाद में लाजमी प्रीख्या अमलों की लोड़ीदा समा शामिल किया गया है। एजेंसी ने कहा कि यह सुधार पिछले कई सालों तो उम्मीदवारों तो प्राप्त प्रतिक्रम के आधार पर किए गए हैं। एजेंसी ने कहा है कि यह गल यकीनी बनाने लिए वचन दे कि नीट UG प्रीख्या उम्मीदवार जरूरतों के अनुसार निरपक्ष सुरक्षित जवाबदेह ढंग कार्रवाई की जाए। सरकार ने संस्थागत सनती पार गाहकों परचून विक्रेताओं तो मीटर ईंधन हाई स्पीड डीजल खरीदन तो रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि वह घरेलू पेट्रोल पंपों तो अपन जरूरत पूरी कर। पछमी एशिया टकराव कारण आलमी सप्लाई लड़िया में विघन दरमियान स्थानक ईंधन की घाट को रोकने लिए यह फैसला किया गया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि पाबंदियां 90 दिनों लागू रहनगियां, पर चून विक्रेताओं प्रति गाहक प्रतिदिन वध तो वध 200 लीटर हाई स्पीड डीजल बेचने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि आदेश इस संकट दौरान जमाखोरी रोकने लिए एक अस्थाई उपाय। इसने तेल कंपनियां परचून विक्रेताओं आदेश

सो वेलकम बैक एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते तुसी अपना प्यारा शो सुन रहे हो जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। तो लव यू जिंदगी उदों ही हुंदी है जदों असी तनो मनो तनो सारे पासों मतलब प्रॉपर असी ध्यान लगा के कहने कि लव यू जिंदगी। शुकराना करते हैं असी अपनी जिंदगी का जिहड़ी सवेर की साडी अख खुलदी आ, असी शुकर मनाउने आ कि शुकर है कि साड़ी अख खुली है ना। सो अपने आप को हमेशा चढ़ती कला च रखना चाहिए। ये सियाने सानू एवें नहीं कह गए, हमेशा सानू चढ़ती कला च रखना चाहिए। तुहानू मैं एक दोस्तों कहानी सुनाउना। एक पिंड विच एक गरीब माँ अपने पुत नाल रहिंदी सी। पुत दे बहुत वड्डे सुपने सी पर घर दे हालात बहुत माड़े सी। कई बार उन्हें लगता सी कि शायद वो अपने सुपने कदे पूरे नहीं कर सकेगा। एक दिन उन्हें माँ नूं पुछया, माँ साडे कोल पैसे नहीं सहूलतां नहीं फिर भी तू हर वेले खुश किवें रह लैंदी है। माँ मुस्कुराई ते कहिंदी, पुत मेरे कोल एक गुल्लक है जो मैनू हर रोज़ अमीर बनाउंदी है। पुत हैरान हो गया, कहिंदा उन्हें कदे घर विच कोई गुल्लक नहीं वेखी। कुछ सालों बाद पुत पढ़ लिख के चंगी नौकरी ते लग गया। पहली तनखाह मिली तो वह माँ लई बहुत सारे तोहफे लैके घर आया। घर पहुँच के उन्हें माँ नूं कहा, अज तो मैनू अपनी गोलक दिखा दिओ जिसने तुहानू अमीर बनाया सी। माँ हस पई, उन्हें पुत दा हाथ फड़िया ते घर दे बाहर लै गई। उत्थे कोई गोलक ही नहीं सी। माँ ने कहा, पुत मेरी गोलक मिट्टी दी नहीं सी, जदों भी कोई मेरी मदद करता सी मैं उस पल नूं अपनी गोलक विच पा लें।

नमस्कार, शाम 7 बजे दी एफएम न्यूज हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सिक्ख्या, सेहत संभाल, खेडा अते शासन समेत औरतां वख-वख खेतरां विच प्रमुख भूमिका निभा रहियां ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वल्लों श्री अमरनाथ यात्रा दीआं तैयारियां दी समीख्या, बहुपदरी सुरक्षा ग्रिड स्थापित करन दे दित्ते निर्देश। विदेश राज मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, भारत दहशतगर्दी दे सारे रूपां दा मुकाबला करन लई मध एशियाई देशां नाल काम करन लई पूरी तरह वचनबद्ध है। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून नूं होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लई प्रीख्या दी म्याद 15 मिनट वधा के 195 मिनट कीती। बीजेपी पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल दौरान पंजाब नूं केंद्र तो बेमिसाल वित्तीय सहायता मिली है। प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाजी कोच अते एशियाई खेडां विच सोने दा तमगा जीतण वाले जसपाल राणा दा देहांत। पंजाब दे सेहत अते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला विच पीलिया दे मामलियां दा सूचना मिलन उपरांत कीता टीम सने दौरा, कहा स्थिति काबू हेठ है। 14 जून तक इन्हां पंजाब ते हरियाणा दे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच बारिश अते तूफान दा येलो अलर्ट जारी कीता गया। औरतों का आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप आज तो शुरू हो रहा है। इसन इस घंटे दी एफएम न्यूज हेडलाइंस। हुण तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद तुसी सुनोगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया।

हाँ जी, प्रोग्राम फिल्मी दुनिया सुन रहे हो तुसी। मैगे जी, इस दे नाल ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे हिंदी मेलोडीज भी तुहाडे वास्ते पेश कर रहे हैं। हुन गलबात करिए इस फिल्मी महफिल दे विच हिंदी सिनेमा दी ही एक अगली हस्ती, एक मशहूर हस्ती, सुनहरी दौर दा ओ नाम जो अमर है अपनी खूबसूरती करके, अपनी सादगी करके, अपनी मासूमियत करके। गल करिए फिल्म एक्ट्रेस शामा दी। पूरा नाम खुर्शीद अख्तर। 1935 दे विच पैदा हुई है अदाकारा, जिन्होंने क्लासिकल इंडियन सिनेमा दे विच जानिया जाता है उन्हां दियां अडल्ट स्टारिंग रोल्स करके। फिल्मां दी तां गलबात करदे हाँ, पर उस तो पहला उन्हां दे बचपन वाल रुक करते हाँ। बचपन दे विच ही उन्होंने अपने परिवार नाल मुंबई आना पिया, ते सिर्फ बाल कलाकार वजो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने 1945 दे विच रिलीज़ हुई फिल्म जिन्नत दे विच काम किया। उन्होंने पहली फिल्म सी। बाद विच मशहूर निर्देशक विजय भट्ट ने उन्होंने शामा नाम दिता, ते इस तरह मशहूर हुई शामा नाना, पर असली नाम खुर्शीद अख्तर। दोस्तों शामा की गल करिए, उन्होंने शुरुआती सालों में उन्होंने पहला छोटे छोटे रोल्स फिल्मों के मिलते, उन्होंने असली जड़ी है रेकोगनाइजेशन पहचान मिली 1954 आई 1954 की फिल्म आर पार।

FM 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन कीता होया से अपने दोस्त आरजे नेहा रलहन दे नाल। ते जी हाजिर हां लैके प्रोग्राम पब्लिक मंच, एक अजिहा मंच जिथे असी समाज दे उन्हां मुद्दियां ते गल करदे हां जो अक्सर घरां दीआं चार दीवारियां अंदर ही दब के रह जांदे ने। दोस्तों अज गलबात करांगे एक अजिहे गंभीर विषय ते जिसका शीर्षक है घरेलू हिंसा चुप्पी नहीं आवाज बनो। घरेलू हिंसा एक अजिहा मुद्दा है, एक अजिहा विषय है जो अज भी चाहे असी 21वीं सदी दे विच रहिंदे हां, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हाँ, पर फिर भी किते ना किते किसी ना किसी घर दे बंद दरवाजे दे विच एक औरत नूं, बच्चे नूं या किसी भी इंसान नूं इस दा सामना करना पै रहा है। इस बारे अज असीं गल्लबात करांगे इस प्रोग्राम

ही दब के रह जाते ने। दोस्तों अज गलबात करांगे एक अजिहे गंभीर विषय ते जिसका शीर्षक है घरेलू हिंसा चुप्पी नहीं आवाज बनो। घरेलू हिंसा एक अजिहा मुद्दा है, एक अजिहा विषय है जो अज भी चाहे असी 21वीं सदी दे विच रहिंदे हां, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हाँ, पर फिर भी किते ना किते किसी ना किसी घर दे बंद दरवाजे दे विच एक औरत नूं बच्चे नूं या किसी भी इंसान नूं इस दा सामना करना पै रहा है। इस बारे अज असी गल्लबात करांगे इस प्रोग्राम पब्लिक मंच दे जरिए, जानने की कोशिश करांगे कि है इस घरेलू हिंसा का कारण, कि रुकन की बजाए समय के नाल जिहड़े केसिस ने जिहड़ियां खबरां ने वो इस दे विच वाधा दस रही ने, कि कारण है ते इस दे नाल ही घरेलू हिंसा नूं किवें रोकिया जा सकता है, इस बारे भी गलबात करांगे। कुछ हैल्पलाइनस ने सरकार वालों, उन्हां बारे भी गलबात करांगे। पर गल करिए घरेलू हिंसा की, जदों असीं दोस्तों हिंसा शब्द सुनते हैं ना तो अक्सर जिहड़ा साडा मन है इस विच मारकुट की तस्वीर आती है, पर घरेलू हिंसा कि सिर्फ मारकुटा ही है या घरेलू हिंसा का मतलब इस तो भी ज़्यादा डूंगा है, इस बारे मैनू दसना है तुसी, क्योंकि प्रोग्राम है पब्लिक मंच यानी जनता की आवाज़ जनता के विचार। तो बस फिर मेरे नाल जुड़न वास्ते नंबर नोट कर लवो जी, नंबर है 01 8 1 23 42 174, नंबर दोबारा दोहरा दिनी हाँ 01 8 1 2 3 4 2 1 7 4। तो ये छेती छेती नंबर डायल करो, इंतज़ार कर रहे हैं तुहाडा इस विषय नूं लैके साडे सरोते की सोच रखते ने, वो की अज सांझा करना चाहते ने, कि तुहाडे आस पास भी कोई घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, जे हो रहा है तो उसकी जिंदगी दे विच शांति लियान लई तुसी अपने तौर पर की किता। प्रोग्राम विच जुड़न वास्ते नंबर दस दिता है, तो इस नाल ही पहला गीत पेश करन जा रही है जी आवाज़ कनवर गरेवाल दी।

0: दोस्तों प्रोग्राम पब्लिक मंच दे विच गलबात कर रहे हाँ घरेलू हिंसा विषय दे उत्ते। एक अजिहा विशा जो गंभीर भी है, सोचने लई मजबूर भी करता है, तो समय की मंग भी है इस ते गलबात करना। प्रोग्राम दे विच दोस्तों समय की गल करिए महज 11 मिनट बाकी ने, ते दोस्त जिहड़े इस टाइम सुन रहे ने उन्होंने इल्तजा करते हाँ कि प्रोग्राम का नंबर एक अज चेंज होया है। नंबर तुहानू बार बार दस रहे हैं अज, तो एक बार फिर नंबर दस दें, नंबर है जी 01 28 130 74 01 81 28 13 074। तो प्रोग्राम दे विच गलबात करिए घरेलू हिंसा एक्ट बारे गलबात करते हाँ। तो इस एक्ट दे जेकर असी गल करिए कौन शिकायत जड़ी है वो कर सकता है। दोस्तों हर औरत जो पति अपने इनलोज यानी सोरा परिवार, लिव इन पार्टनर, जा खूनी या गोद ले रिश्तेदारा तो किसी भी तरह जड़ा है हिंसा का शिकार हो रहा है, जो भी शख्स वो इस एक्ट के जरिए शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है। हुन शिकायत दर्ज करनी कित्थे है, क्योंकि ये तो सब सानू पता है कोई प्रॉब्लम विच है वो शिकायत दर्ज कर सकता है, पर कित्थे करनी है, किस तरह होंदी है, इस गल तो असी बेखबर रहिंदे हां। दोस्तों पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर, सेवा प्रदाता, NGO जां सीधा मैजिस्ट्रेट कोल जाके शिकायत कर सकते हो जेकर तुसी घर विच किसी भी तरह की हिंसा का शिकार हो रहे हो। जब कोई शब्द बोलता है ता उस नू रोकना जरूरी हुंदा है, क्योंकि जे एक बार ना रोकया जाए ना तो फिर सामने वाला बंदा मान लैंदा है कि इस नू कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बंदे ने बोलना ही नहीं, कोई रिएक्शन देना ही नहीं। पर जरूरी है इत्थे सानू अपनी अहमियत दा पता होना बहुत जरूरी है। गल करिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो दोस्तों हर ज़िले विच सरकार वालों जिहड़े अफसर नियुक्त किए जाते हैं उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं। तो ना सिर्फ तुहाडी FIR दर्ज करवाण विच, मैडिकल करवाण, बल्कि शैल्टर होम भी दिवाण विच पूरी हैल्प करते हैं। इस दे नाल DIR रिपोर्ट यानी PO जां सर्विस प्रोवाइडर जिहड़े ने वो डोमैसटिक इंसीडेंट रिपोर्ट बना के कोर्ट विच देणगे, यानी FIR जरूरी नहीं है। तो इस बारे होर भी गलबात करांगे, पर प्रोग्राम दे विच एक दोस्त ने शिरकत की है, तो लो जी फिर इन्हां नाल भी गलबात करदे हां कि कित्थों मिला है ते की कहना चाहुंदे ने। हैलो
1: हैलो
0: जी, कौन ते कित्थों?
1: जी मैं फरीदकोट तो डिप्टी चावला
0: जी। जनाब प्रोग्राम
1: दे विच तुहाडा टॉपिक आ रहा है घरेलू हिंसा
0: जी। घरेलू हिंसा ते जनाब गलबात कर रहे हैं, एक गंभीर विषय है जिस ते गलबात होना बेहद जरूरी है। ते घरेलू हिंसा जिथे असीं पुराने जे आंकड़े की गल करिए जनाब, ते औरतां ते बच्चे जिहड़े है इन्हां ते घरेलू हिंसा दा शिकार हुंदे सी, पर समय दे नाल खबरां दसदी है कि अज बंदियां ते भी घरेलू हिंसा दा शिकार हो रहे ने। तुहाडा इस ते की कहना है? घरेलू हिंसा दा जे असीं कारण पुछिए तां की लगदा है, की कारण है इह घरेलू हिंसा
1: वधदा?
0: जी दो लोग जिहड़े अपने नाल, जी दो लोग जिहड़े जुड़दे ने आपस विच इक जिंदगी गुजारन वास्ते, उहनां च तुहाडे अनुसार अंडरस्टैंडिंग दी घाट है?
1: घरेलू हिंसा कले बच्चे दी या पापा गल करदे आ, एक लेडीज दी या बच्चे दी जिंदगी नहीं खराब होंदी, बंदा भी जिहड़ा घर जांदा उहदी भी जिंदगी ज्यादा खराब होंदी है।
0: जी बिलकुल,
1: उहदी कुत्तेखानी ज्यादा होंदी है।
0: जी इत्थे गलबात करिए हर एक शख्स है उसका ये हक भी है, तो एक सानू सरकार वालों भी अधिकार मिले, क्योंकि असीं आज़ाद देश के मुल्क है, तो हर किसी नू आज़ादी जिहड़ी है सुकून जिहड़ा

सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं दौड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। एफएमएन 102.7 मेगाहर्ट्ज़ दे आकाशवाणी जलंधर द रेनबो चैनल ट्यून इन किया है तुसी अपने दोस्त आरजे निहारल दे नाल। ते मैं क्या जीत रहे थे, मिठी जी मुस्कान, दिल विच जोश प्यार, ते दोवें हाथ जोड़, नमस्कार आदाब, इस्तकबाल करते हाँ सारे ही स्रोतियां दा इस खास प्रोग्राम गीता दी महफिल, तुहाडा फरमाइशी प्रोग्राम दिल चाहता है। ते मैं क्या जी अज दे इस प्रोग्राम वास्ते मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हाँ, क्योंकि शुक्रवार की रात है, ते तुहाडे नाल दिल चाहता है दे जरिए मुलाकात। मैं क्या जी तुहाडा दिल अज केड़े हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीत

फरमाइश भी आई है जी, मैं जी बड़ी जबरदस्त फरमाइश आई है, तो इस फरमाइश नू प्ले करन तो पहला मेरी एक ही जी कंडीशन है, तो जो मैं जो ये गीत लगावांगी ना तो बस सारे ने इंजॉय करना है, पूरी तरह इंजॉय करना है, तो इस दे नाल ही नाल इस गाने की ताल दे उत्ते थिरकना भी पूरा है। फरमाइश आई है जी इन्हों की फिल्म डिस्को डांसर का कहते गीत सुना दिता जाए सानू, तो लो जी फिर गीत की फरमाइश करते हैं पूरी, गीत बोल तो रेडियो सैट से

सीत दिशा गोस्वामी। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां का भी मैसेज आया है जो कि पहुंचे है साढ़े तक आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो। मैगे जी एक सरोते साढ़े प्रोग्राम नू इन्ना पसंद करते कि इन्होंने एक ही प्रोग्राम हालांकि इन्होंने नाम भी ले लिया गया है फिर भी इन्हों दे लगातार बैक टू बैक जड़े है मैसेजेस आ रहे ने। बहुत शुक्रिया जी जो तुसी इन्ना प्यार दिने हो पर इस दे नाल प्रोग्राम दे विच जो तुसी एक बारी मैसेज भेज दिने हो ना वो तुहाडी फरमाइश साढ़े तक पहुँच जाती है तो कोशिश रहती है जल्दी तो जल्दी उस फरमाइश नू पूरा करन दी ते बस थोड़ा जिहा इंतजार रखना है। नेहा जी सत श्रीकाल मैं सत श्रीकाल लेके भेजे जी इन्होंने तो मोस्ट वेलकम इन दिस शो तो मैसेज भेजे है साडा स्वागत कर रहे हैं जसवीर सिंह दोहरा मिंटू चंदेल कोटली थान सिंह तो लिखते ने कि लता जी रफी साहब का जोड़ा है गीत सुना दिता जाए। एक होर इन्होंने फरमाइश भेजी है एक उन्होंने नवी फरमाइश भेजी है तो एक पुरानी फरमाइश लिख के भेजी है कि जिहड़ी तुहानू पसंद है दोनों विचों प्ले कर दो। बहुत सियाने पकड़ लिया पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेजेस वास्ते। तो प्रोग्राम दे विच जेकर मैसेज एक बार भेजना है तो मैं कह जी तुहाड़ी फरमाइश भी एक ही होनी चाहिए है हुण तुसीं दो गाने भेज दे मैनू किहड़ा पता कि तुहाड़ा पसंदीदा गीत किहड़ा है। ते जी अगले मैसेज वाल रुक करिए ते PLS एनी सोंग लिख के इन्होंने भेजा है तनोरी तेली वाला तो निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया ते आयान बाबू ने ते मैसेज पूरा होंदा इन्हां दे संदेश नाल जो है आपका पल खुशियों से भरा हो। बहुत शुक्रिया जी ते आपां भी यही उम्मीद करते हैं साडे सुनन वालियां दा हर एक दिन हर एक दुपहर हर शाम हर रात बहुत ही सुनहरी खुशहाल होवे। ते लो जी फिर इन्हां सारे ही दोस्तां दी फरमाइश ते प्ले करन जा रही हां पिंड दी कुड़ी फिल्म दा एक गीत जिसनू आवाज़ दिती है शमशाद बेगम ते मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों प्रोग्राम दे विच अगला मैसेज रजक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान जिशन खान दा साडे तक पहुंचया है ते इस दे नाल ही राम सिंहपुरा जिला श्री गंगानगर तो पवन राजेश अजय राहुल मनु बब्बर का भी पहुंचे मैसेज ते सुखदेव सिंह नरेंद्र कौर सन्नी मुन्नी काका बिट्टू लाडी मास्टर मोहन जनक नगर जलंधर तो भेज रहे ने इस नाल ही नाल नोहा राजस्थान तो नरेंद्र सुथार मनोज हिमांशु का मैसेज आया है ते श्रोता रघुवीर नगर दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायब ते लड्डू दा पहुंचे साढ़े तक ते लोकेंद्र वर्मा दे नाल नाल अनिकेत अर्पिता रेखा इशिका ते इन्हां दे साथी सुरेंद्र सिंह जलंधर तो भी मैसेज कर रहे ने प्रोग्राम दे विच ते हेमलता हीना हर्षित गोस्वामी जिला गंगानगर के रहने वाले ते मलोर तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत गिल कैनेडा के रहने वाले जिन्होंने मैसेज भेजा ते अमरगढ़ जिला गंगानगर तो कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत गुरनूर ते कुलविंदर हरविंदर मैसेज कर रहे हैं ते एक होर फरमाइश सूरतगढ़ राजस्थान तो भूपेंद्र जी भी साढ़े तक पहुंची ते इन्हां सारे ही दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम दे विच हिस्सा पाण वास्ते शिरकत करन वास्ते ते इस दे नाल ही तुहाड़े तो हुण इजाजत चाहुंदी हां पर जांदे जांदे प्रोग्राम का आखिरी गीत पेश कर दिया

नमस्कार आदाब। एफ एम एनिक्स 2.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल ट्यून इन कीता होया तुसी ते बने होए अपने दोस्त आर जे निहारल हंदे नाल। एक बार फिर प्रोग्राम दे विच खुशामदीद।

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है विच गलबात करते हाँ सदाबहार गीतां दी। इस विच गल्लां कट पर सदाबहार गीतां दा जिहड़ा है आनंद ज़्यादा लैंदे हाँ, क्योंकि एक गीत जिंदगी दा फलसफा दसदे ने। बहुत कुछ इन्हां गीतां दे लफ्ज़ां दे विच समेटिया होया, तदे तां इस नूं नगमा कहा गया है। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है दे विच बशीर बद्र साहब दियाँ कुछ लिखियां इस तरह याद आ रही लिखते ने। मोहब्बतों में दिखावे कि मोहब्बतों में दिखावे कि दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आत्मी ना मिला। जदों गलबात करन ले कोई नहीं मिलता तो साथी बनते हैं, हम सफर बनते हैं गीत। तो इन्हां गीतां विचों ही तुहाडे लई प्ले करन जा रही हूँ मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ दे विच ए सदाबहार गीत।

प्यार और तकरार तुम ही से, फिर है मनुहार तुम ही से, पतझड़ मन का दूर करे जो, गुलशन और बहार तुम ही से।

प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, सदाबहार हिंदी गीता दा आनंद मान रहे हो तुसी। प्यारे प्यारे मीठे मीठे नगमे जो कि हमेशा ही हर समय ही जिहड़े है गुनगुनाए जाते हैं, बेहद प्यारे जिंदगी दे कुछ फलसफे ने। प्यार दे समझो, मुहब्बत दे समझो, या किसी बिरह दे समझो। कहते इश्क तुमसे मेरे यार रहने दे, इश्क तुझसे मेरे यार रहने दे, दिल की तड़प बेशुमार रहने दे, आज बस चाहत की बात कर, कल के लिए तकरारें रहने दे।

प्यार करने का उसे खूब हुनर आता है, मुस्कुरा कर वो मेरे दिल में उतर आता है। मचाए कैसे मोहब्बत से दिल को ए बिस्मिल, वो हर घड़ी मेरी आंखों को नजर आता है।

कुछ तो ज़रूर खास है, कुछ तो ज़रूर खास है, ये सारी बातें आम नहीं। और कौन कहता है कि रिश्ता नहीं है हमारे बीच, बस उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है।

से इस पल को तुम भुला ना देना, हसीन से इस पल को तुम भुला ना देना, गम भरी यादों को तुम याद ना करना। जिंदगी तो बहुत दिलकश है यारा, यूं ही जिंदगी को तुम परेशानियों में गवा ना देना। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है, दानंद मान रही हूँ, सदाबहार हिंदी गीता दिस महफिल नूहन इत्थे ही रोकंदा तुहाड़े तो इजाजत लैन का वेला आ चुका है। पर जाते जाते एक होर गीत सुपर हिट गीता दी आवाज़ दे विच तुहाड़े वास्ते पेश करन जा रही हाँ। तो इस नाल ही मैनू यानी अपने दोस्त आर जे नेहा रलहन नू दियो इजाजत, एंजॉय करो एक गीत।

एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। रात 11 बजे ने ते साडी अज दी सभा दे सारे ही प्रोग्राम इत्थे समाप्त हुंदे ने। हुण तुहानू मिलांगे कल सवेरे जद घड़ी दीआं सुईआं इशारा करनगीआं 5:53 दा। तद तक अपना ते अपणिआं दा रखो ध्यान। शबा खैर, जय हिंद।